मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर धात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ कर

0: एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। माता रानी इस संसार की रचना करने वाली और सभी पर ममता लुटाने वाली सच्ची माँ है। जो भी भक्त माँ के चरणों में आता है, उसके सभी कष्टों को माँ तुरंत दूर कर देती है। माँ दुर्गा साहस और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है।

मस्तक पर चंदा, जटाओं में गंगा, गले में नागराज का धारण करने वाले शिव का रूप सबसे निराला है। वो कहते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो केवल एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय नाम का ये पंचाक्षी मंत्र अपने आप में एक महाशक्तिशाली मंत्र है, जिसका जप करने से मन को असीम शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। गुरु जी ने सिखाया कि ईश्वर एक है जो हर कण में मौजूद है और सब पर अपनी कृपा रखता है। गुरु की शिक्षा हमें ईमानदारी की कमाई और दूसरों की मदद करने की सीख देती है। जो भी सच्चे मन से वाहे गुरु का सिमरन करता है उसके जीवन में सारे कष्ट और डर दूर हो जाते हैं।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार सुरेश वाडकर और संगीत सतीश भाटिया का।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को न पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत था सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र प्रस्तुत है चिंतन।
1: ज्ञान आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जिसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी को सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी हैं, हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं। ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशियां बांटो। न दुखी रहो न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वो सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी जिंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी हैं। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है।
0: ये था आज का चिंतन। सवेरे के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, काव्यधारा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सविता राठी का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: हर वृद्ध जोड़े को समर्पित बुढ़ापा। अब आया बुढ़ापा हमें प्रिय, तू रहना मेरे साथ प्रिय। मैं बनूं सहारा तेरा प्रिय, तू बने सहारा मेरा प्रिय। मैं अपने दिल की कह लूंगा, मैं अपने दिल की कह लूंगा, तू अपने दिल की कह लेना। जब खुश होंगे संग हंस लेंगे, हो गम तो संग में सह लेना। अब बूढ़े हो गए बाल प्रिय, और सिकुड़ गए हैं गाल प्रिय। अब बूढ़े हो गए बाल प्रिय, और सिकुड़ गए हैं गाल प्रिय। आंखें भी धुंधलाई सी हैं, घुटनों में रही न जान प्रिय। जीवन बीता जिनके पीछे, अपने जीवन में लीन हुए। था पुष्प समझकर सींचा जो, वही आज है सूल हुए। था पुष्प समझकर सींचा जो, वही आज है सूल हुए। अब बदल गए हालात प्रिय, अब बदल गए हालात प्रिय। अब रहा नहीं कुछ हाथ प्रिय, दो रोटी का खर्चा अपना, बस इतनी सी औकात प्रिय, बस इतनी सी औकात प्रिय। अब बीमारी ने घेरा है और चारों ओर अंधेरा है। अब बीमारी ने घेरा है और चारों ओर अंधेरा है। अब सत्य समझ में आया, कोई तेरा है ना मेरा है। अब सत्य समझ में आया, कोई तेरा है ना मेरा है। तू करना मुझको माफ प्रिय, मैं छोड़ रहा हूँ साथ प्रिय। अब प्राण हंस उड़ने को है, तू रखना अपना ख्याल प्रिय, तू रखना अपना ख्याल प्रिय। पुरुष का साया। एक स्त्री ने मुझसे पूछा, कैसा होता है पुरुष का साया। एक स्त्री ने मुझसे पूछा, कैसा होता है पुरुष का साया। ये सुनकर ही मैं हंस पड़ी और हंसकर उसे बताया, उसके बिना श्रृंगार नहीं, नारी तो खुद में नार नहीं। उसके बिना श्रृंगार नहीं, नारी तो खुद में नार नहीं। अगर साथ नहीं है पुरुष तेरे, तेरा जीवन साकार नहीं। अगर साथ नहीं है पुरुष तेरे, तेरा जीवन साकार नहीं। तेरे माथे का सिंदूर पुरुष, तेरे माथे का सिंदूर पुरुष, तेरी पायल की झनकार पुरुष, तेरे खाली इस जीवन में भर देता रंग हजार पुरुष, भर देता रंग हजार पुरुष। वो पुरुष है, वो पुरुष है जो अपने दिल में लाखों गम को रखता है। वो पुरुष है जो अपने दिल में लाखों गम को रखता है। तू खुश रहे, आबाद रहे, वो दिन भर मेहनत करता है। तू खुश रहे, आबाद रहे, वो दिन भर मेहनत करता है। तेरे दिल की आवाज पुरुष, तेरे दिल की आवाज पुरुष, तेरी ख्वाहिश का आगाज पुरुष। मुश्किल कोई बात नहीं अगर चल रहा है साथ पुरुष। वो तपता कड़ी धूप में है, वो तपता कड़ी धूप में है, पर तुझे छांव में रखता है। तू शिकवा भी कर लेती है, वो गिला कभी ना करता है। तू शिकवा भी कर लेती है, वो गिला कभी ना करता है। एक स्त्री का सम्मान पुरुष, बच्चों की है पहचान पुरुष। और बात अगर परिवार की हो, और बात अगर परिवार की हो, तो दे देता है जान पुरुष, तो दे देता है जान पुरुष, तो दे देता है जान पुरुष। धर्मयुद्ध है दया हमारे दिल में जो, है दया हमारे दिल में जो, तू उसको डर था समझ बैठा। हमने तो तुझको माफ किया, तू फिर भी गलती कर बैठा। एक बार की गलती माफ करे, एक बार की गलती माफ करे। हम देव भूमि में रहते हैं, गलती पर गलती करने पर फिर सजा भयंकर देते हैं। गलती पर गलती करने पर फिर सजा भयंकर देते हैं। हो याद अगर ना रावण तो, हो याद अगर ना रावण तो, तुझको सुमिरन करवाते हैं। चल आज तुझे हम रावण की लंका का भ्रमण कराते हैं। एक छोटी सी सेना लेकर लंका को राख बना डाला, एक छोटी सी सेना लेकर लंका को राख बना डाला। था वीर बचाना लंका में, था वीर बचाना लंका में, उसको शमशान बना डाला। तूने पूछा मासूम से धर्म, तूने पूछा मासूम से धर्म। हम युद्ध भूमि में बुलाते हैं, आ निकल के बिल से अब बाहर, तुझको ललकार लगाते हैं। तू आग लगाने आया जो, तू आग लगाने आया जो, उस आग से तुझे जला देंगे। हर एक धमाके पर तुझको हम अपना धर्म बता देंगे।

0: हर एक धमाके पर तुझको हम अपना धर्म बता देंगे। लक्ष्य एक उद्देश्य, उद्देश्य ही उद्देश्य को उद्देश्य से ही पाएगा। चलता रहा अगर पथिक मंजिल पे पहुंच जाएगा, चलता रहा अगर पथिक मंजिल पे पहुंच जाएगा। नजरें जो होंगी तेज, नजरें जो होंगी तेज केवल लक्ष्य नजर आएगा। अर्जुन के वान की तरह, अर्जुन के वान की तरह तीर चक्षु में ही जाएगा। अगर गुम रहा तू मस्ती में, अगर गुम रहा तू मस्ती में तो भीड़ में खो जाएगा। अगर गुम रहा तू मस्ती में तो भीड़ में खो जाएगा। जो उठ गया तू ठान कर, जो उठ गया तू ठान कर सबसे जुदा हो जाएगा। मुश्किल मुश्किल न कोई काम है अगर तेरे हौसलों में जान है। हर लड़की में, हर लड़की में अरुणिमा यहाँ, लड़के में अब्दुल कलाम है, लड़के में अब्दुल कलाम है। जो रुक गया तो झुक गया, जो जो रुक गया तो झुक गया, जो झुक गया तो मिट गया। मिटना नगर मंजूर हो, मिटना नगर मंजूर हो, मंजिल भले ही दूर हो तो ध्यान से ये ध्यान रख, तो ध्यान से ये ध्यान रख के ध्यान पर ही ध्यान हो। रस्ते जहाँ रुक जाते हैं जीवन खत्म हो जाता है। संघर्ष में जीने में भी एक अलग मजा सा आता है। रस्ते जहाँ रुक जाते हैं जीवन खत्म हो जाता है, और संघर्ष में जीने में भी एक अलग मजा सा आता है। संघर्ष से चट्टान को भी, संघर्ष से चट्टान को भी चीर राह बनाएगा। उद्देश्य ही उद्देश्य को उद्देश्य से ही पाएगा। चलता रहा अगर पथिक मंजिल पे पहुंच जाएगा, चलता रहा अगर पथिक मंजिल पे पहुंच जाएगा। जीवन की व्यथा। हम जीते हैं ऐसे कि जाना नहीं है, हम जीते हैं ऐसे कि जाना नहीं है, और जाते हैं ऐसे कि जिए ही नहीं है, और जाते हैं ऐसे कि जिए ही नहीं है। जो जोड़ा यहाँ सब यहीं छोड़ जाएगा। कमाया हुआ भी न संग तेरे जाएगा, कमाया हुआ भी न संग तेरे जाएगा। तू भागा बहुत चार पैसे कमाने में, जो मिलते हैं केवल यहीं इस जवाने में। जो जाता है तूने कमाया नहीं है, जो जाता है, जो जाता है तूने कमाया नहीं है। मोहब्बत से जीवन बिताया नहीं है, न फुर्सत थी तुझको, न फुर्सत थी तुझको मिलने मिलाने की। अपने लिए, अपने लिए चंद लम्हे बिताने की। तू कहता यही था, तू कहता यही था समय तुझ पे कम है। मैं आऊंगा लेकिन अभी कुछ उलझन है, मैं आऊंगा लेकिन अभी कुछ उलझन है। न फुर्सत मिली तुझको, न फुर्सत मिली तुझको खुद को खुद से मिलाने की। न फुर्सत मिली तुझको खुद को खुद से मिलाने की। कभी बैठकर अपने दिल में झांक पाने की। तू जीवन से भागा या जीवन में भागा ये मालूम हुआ जब समय था अभागा। इस बार सच में समय तुझ पे कम था। एक मौका न मिल पाने का दिल में गम था। इतने मौके मिले जियाना तू खुलकर। हम इंसानों की बस यही तो है फितरत। जब समय तेरे संग था तो तू ना रुका, अब तू रुक गया तो समय ना रुका। हम जीते हैं ऐसे कि जाना नहीं है, और जाते हैं ऐसे कि जिए ही नहीं है, और जाते हैं ऐसे कि जिए ही नहीं है।
1: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सविता राठी का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: इयम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आइए सुनते हैं जानकारी जिसका विषय है वाणी की स्वच्छता।
2: खान पान पर नितांत अनुशासन जरूरी है। गलत दिनचर्या और खान पान की आदतों की वजह से पेट का अम्ल गले में आने की शिकायत हो सकती है, जो गले के अंदर के सराव को परिवर्तित करने के साथ स्वर यंत्र की हल्की सूजन का कारण भी हो सकता है। रिफ्लेक्स के ऐसे मरीजों के गले में कुछ अटकना, बार बार गला साफ करना, लंबी मियाद की खांसी, जीभ पर जमाव, बार बार ब्रोंकाइटिस जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों एवं व्यावसायिक वाणी प्रयोग करने वाले को अधिक मिर्च मसाले या तेल युक्त खाना, अधिक चाय, कॉफी, शीतल पेय और शराब नहीं लेनी चाहिए। सादा खाना दिन में दो बार से ज्यादा बार खाएं, परंतु एक ही बार में पेट भरकर खाना न खाएं। दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट, सूखे फल, कार्यक्रम प्रस्तुति या गायन से कुछ समय पूर्व न लेवें। सुगंध युक्त गोलियां, च्युइंगम, श्वास को ताजगी देने वाली गोलियां प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पान, पान मसाला या पान पराग, तंबाकू, सुपारी, गुटखा आदि नहीं लेना चाहिए। नींबू का रस और हर्बल चाय आवाज के लिए फायदेमंद होती है। हर बार कुछ भी खाने के पश्चात पानी पिएं। सुरक्षित पीने का पानी हमेशा साथ में रखें। सामान्य रूप से नाक से श्वास लेना अच्छी आवाज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि नाक से श्वास छनती है और गर्म होती है और इसे उपयुक्त आर्द्रता मिलती है। नाक बंद रहने, नाक या साइनस की अन्य तकलीफों के लिए विशेषज्ञ उपचार लेना चाहिए। सूखी ठंडी और गर्म हवा दोनों ही नाक गले के स्रावों को प्रभावित करती हैं और आवाज ठीक से नहीं निकलती, खांसी भी होती है। इसी प्रकार मुंह से श्वास लेना, तेज पंखे के नीचे सीधे बैठना या सोना भी ठीक नहीं होता। यदि सामर्थ्य है तो वातानुकूलित वातावरण में रहना अच्छी आवाज के लिए फायदेमंद है। ऐसे वातावरण से बाहर गर्म वातावरण में जाने से कुछ मिनट लगाएं, अचानक ही नहीं जाएं। धूल और धुएं युक्त वातावरण से संभवतः बचें। धूम्रपान न करें। यदि मंच पर धुआं हो तो धुआं हटाने वाली वेंटिलेशन सिस्टम या धुआं खाने वाला यंत्र लगाएं। तेज सर्दी या एक्यूट एलर्जी या नाक गले के तेज या संवेगी संक्रमण के दौरान गायन कार्यक्रम न देवें। नाक की एलर्जी से ग्रसित व्यक्ति धूल, धुएं, माइट्स, फफूंद और परागकण आदि एलर्जेंस को नियंत्रित करने हेतु उपाय करें। अधिक मेकअप, बालों के या फिक्सिंग या अन्य प्रकार के स्प्रे बहुत सावधानी से और कम उपयोग में लाएं। सभागृह या ऑडिटोरियम या कंसर्ट हॉल की नियमित वैक्यूम क्लीनर द्वारा सफाई कराते रहना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तनाव आवाज को दुष्प्रभावित करते हैं। किसी भी कार्यक्रम प्रस्तुति पूर्व बराबर नींद, आराम और रिहर्सल आवश्यक होते हैं। गायन, भाषण, व्याख्यान, बातचीत के दौरान गला नहीं सूखने दें। बीच बीच में पानी के घूंट पिए, हल्का गुनगुना शहद युक्त पानी कार्यक्रम के दौरान निरंतर पीते रहें। एक ही समय पर लगातार 45 मिनट से ज्यादा आवाज का प्रयोग न करें। भीड़ या अधिक श्रोताओं के समक्ष भाषण देते वक्त माइक्रोफोन या माइक का प्रयोग करें। सभागृह की एकोस्टिक उपयुक्त हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गायकों या व्यावसायिक वाणी प्रयोग करने वालों को भी भीड़ भरी शोरगुल वाली पार्टियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जोर जोर से बात करनी पड़ती है जिससे स्वर यंत्र पर तनाव आता है। बार बार गला साफ करने की आदत न डालें, उपयुक्त इलाज लेवें। जोर जोर से बोलना, चीखना, चिल्लाना और तनावपूर्ण ढंग से आवाज निकालने से बचें। ख्याल रखें खेल खेल में बच्चे अधिक चीखें चिल्लाएं नहीं। हमेशा तनाव रहित रिलैक्स होकर धीरे धीरे बात करें। सिर और गर्दन को गायन या बोलचाल के दौरान सीधा रखें। यदि गर्दन की मांसपेशियों में दर्द या ऐठन हो तो मालिश करें, डॉक्टरी सलाह लेवें। हमेशा 2 फीट की दूरी पर ही बात करनी चाहिए। पेट और श्वसन की कसरतें नियमित करनी चाहिए। बोल

0: प्रभावित न हो इसके लिए शारीरिक और श्वसन तंत्र की कसरतें नियमित करनी चाहिए। बराबर खान पान रखना चाहिए। नियमित आवाज का परीक्षण देते रहें और दांत गिरने का उपयुक्त इलाज कराते रहना चाहिए। हर व्यावसायिक रूप से वाणी प्रयोग करने वाले खासकर पॉप सिंगर्स को नियमित ENT चेकअप करवाते रहना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे जानकारी जिसका विषय था वाणी की स्वच्छता। मीडियम वे 314.47 मीटर पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। किसान भाई सुने खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज जानकारी का विषय है इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं और खेती करने के लिए हर महीना और हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है और किस समय पे हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारे किसान भाई लाभ ले सके, तो ऐसी ही एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है इस पखवाड़े हमारे किसान भाई क्या करें। किसान भाइयों जून का जो प्रथम पखवाड़ा है वो शुरू हो गया और ये किसान भाइयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है और मानसून की तैयारी भी शुरू हो जाती है। किसान भाइयों को खरीफ फसलों की बुआई, खेत की तैयारी, सिंचाई प्रबंधन, पशुपालन तथा बागवानी संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। यदि हमारे किसान भाई सही समय पर सही योजना और सावधानी नहीं बरतेंगे तो खरीफ मौसम की फसलों का अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को इस माह में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है क्योंकि जून का जो महीना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को खेत की तैयारी पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन खेतों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों जैसी रबी फसलें काटी गई हैं उन खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से जो मिट्टी में छिपे कीट और रोगों के अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं और खरपतवार भी कम होते हैं। किसान भाइयों खेत को कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने से एक तो मिट्टी है वो प्राकृतिक रूप से कीट मुक्त हो जाती है और मिट्टी में वायु का संचार बढ़ जाता है। किसान भाइयों जून माह का महीना धान की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त समय है। हमारे किसान भाइयों को उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का चयन करना चाहिए। बीज को बोने से पहले फफूंद नाशक दवाओं से उपचारित करना हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी होता है जिसमें हमारे किसान भाई कार्बन डाइजिम और थिरम का उपयोग कर सकते हैं। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होता है और धान की नर्सरी के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को एक तो खेत अपना समतल करना है और पानी रोकने के लिए ऊंची ऊंची मेड़ों को लगाना जरूरी होता है और जब भी हमारे किसान भाई नर्सरी लगाएं तो पर्याप्त नमी उसमें बनाए रखें। किसान भाइयों ये महीना मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग तथा सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की बुआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाई अगर इन सब चीजों की बुआई करना चाहते हैं तो खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ होता है और बीज की मात्रा और कतार से कतार की दूरी का हमें विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों जून के प्रथम पखवाड़े में गर्मी अधिक होने के कारण सिंचाई प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन खेतों में सब्जियां या गन्ने जैसी फसलें लगी होती हैं उनमें नियमित सिंचाई करनी चाहिए। सुबह या शाम के समय सिंचाई करना अधिक लाभकारी होता है क्योंकि इस समय पानी का वाष्पीकरण कम होता है। किसान भाइयों ये महीना सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है, करेला है, इनमें कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें खेत की नियमित निगरानी हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए और रोग ग्रस्त पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इसके साथ साथ अगर हमारे खेत में रोग या कीट लगते हैं तो हमारे किसान भाइयों को जैविक विधि द्वारा इसका नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए हमारे किसान भाई नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके प्रारंभिक अवस्था में ही अपने खेत में रोगों और कीटों का बचाव कर सकते हैं और साथ साथ हमारे किसान भाई को खेत में खरपतवार नियंत्रण करना भी आवश्यक होता है। किसान भाइयों ये महीना फलदार बागों के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आम, अमरूद, नींबू, पपीता और केले की देखभाल भी जरूरी होती है। किसान भाइयों आम के बागों में फल मक्खियों और अन्य कीटों की निगरानी भी हमें करनी चाहिए और जो गिरे हुए फल हैं उन्हें इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों पशुपालन के लिए भी ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मी इसमें ज्यादा बढ़ती है तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को इस मौसम में सावधान रहने की जरूरत होती है। अधिक तापमान के कारण पशु में लू और गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है। पशुओं को छायादार स्थान पर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ठंडा पानी अपने पशुओं को पिलाएं, हरे चारे की व्यवस्था करें और पशुओं के रहने वाले स्थान की नियमित साफ सफाई रखें ताकि रोगों का प्रकोप ना बढ़े और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो और साथ साथ हमारे किसान भाई अपने पशुओं को संतुलित आहार दें। और भैया एक चीज का और ध्यान रखना है, हमारे किसान भाइयों को समय समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण भी कराना जरूरी है। किसान भाइयों ये मधुमक्खी पालन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण महीना है।

0: क्योंकि मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भाइयों को गर्मी में विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है। मधुमक्खी बक्सों को छायादार स्थान पर रखें तथा पास में स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमें मौसम की जानकारी पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए, जिससे मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार बुवाई एवं सिंचाई कार्य करना बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने से नुकसान कम होता है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रख के लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे खेती की बातें। जानकारी का विषय था इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। मीडियम वे 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। भूले बिसरे गीत फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00 और 10:30 पर श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:00 और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सिमरन सैनी के गाए भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:32 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:45 पर आज आप सुनेंगे वीर सिंह की वार्ता मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका विषय पर आरएन वर्मा जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर से हिमांशु रंजन की बातचीत। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम होगा गपशप अड्डा क्रैश कोर्स पैसा वसूल और ये रिश्ता और रिश्ता ये खास है। आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम 5:00। श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर।

0: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता

0: उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र, और बात करेंगे विश्व रीफ जागरूकता दिवस के बारे में। जी हां श्रोताओं, विश्व रीफ जागरूकता दिवस हम हर साल आज यानी कि 1 जून को मनाते हैं, और इसे एक गंभीर विषय के रूप में इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि हमारे समुद्र की प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स अत्यधिक संकट में है। इस विशेष दिन की शुरुआत वर्ष 2019 में रॉ एलिमेंट संस्था द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता, उद्योगों और सरकारों को प्रवाल भित्तियों के तेजी से होते विनाश और उनके संरक्षण के प्रति सचेत करना है। यद्यपि मूंगे की चट्टाने महासागर के 1% से भी कम हिस्से को घेरती हैं, फिर भी वो लगभग 25% समुद्री जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करती है। जी हाँ श्रोताओं, आजकल ग्लोबल वार्मिंग, महासागरीय अम्लीकरण, प्लास्टिक प्रदूषण और हानिकारक रसायनों वाले सनस्क्रीन के बढ़ते उपयोग के कारण ये संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र कोरल ब्लीचिंग का शिकार होकर तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ये दिन हमें श्रोताओं याद दिलाता है कि रीफ न केवल समुद्री जैव विविधता को बचाते हैं बल्कि तटीय इलाकों को विनाशकारी तूफानों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए इस विषय पर गहन विचार विमर्श और जागरूकता फैलाने के लिए ही हर साल 1 जून को पूरी दुनिया एकजुट होती है। ये दिन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही उस चेतावनी का भी प्रतीक है श्रोताओं, जिसके अनुसार यदि वैश्विक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो वर्ष 2050 तक दुनिया के 90% से अधिक कोरल रीफ पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। इन्हीं ही तो समुद्र के वर्षावन कहा जाता है श्रोताओं, क्योंकि ये अत्यधिक सघन और जैव विविधता को सहारा देते हैं। जहां हजारों प्रकार की मछलियां, कछुए, केकड़े और समुद्री पौधे आश्रय पाते हैं, मानव जीवन के दृष्टिकोण से भी इनका योगदान अतुलनीय है। ये चट्टाने प्राकृतिक तटीय दीवारों के रूप में काम करती हैं, जो सुनामी, चक्रवात और ऊंची समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम करके तटों पर रहने वाले आबादी और बुनियादी ढांचे की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त कोरल रीफ वैश्विक पर्यटन, मत्स्य पालन और नई जीवन रक्षक दवाओं के अनुसंधान का एक मुख्य स्रोत भी है, जिससे दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका भी चलती है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: तो श्रोताओं, अभी हमने बात की रीफ की, तिहा, और हमने जाना कि ये रीफ हमारे लिए कितना जरूरी है भाई। और चलिए अब बात करते हैं श्रोताओं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम माता पिता का वैश्विक दिवस मनाते हैं यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। जी हाँ, माता पिता के लिए जो हम ये आज का दिवस मना रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को पूरे विश्व में माता पिता के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं दुनिया भर के सभी माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, आजीवन समर्पण और बच्चों के भविष्य को संवारने में उनके अथक संघर्षों को एक वैश्विक मंच पर सम्मानित करना है। श्रोताओं, परिवार को समाज की सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण इकाई माना गया है, और यह दिन रेखांकित करता है कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए एक सुरक्षित, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, जिसकी धुरी स्वयं माता पिता होते हैं। एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके पैरों पर खड़े होने तक माता पिता न केवल अपनी खुशियों का त्याग करते हैं बल्कि बिना किसी शर्त के संरक्षण और संस्कार भी प्रदान करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, जिससे समाज को जिम्मेदार नागरिक मिल सके। आधुनिक और अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली के इस दौर में जहाँ अक्सर पीढ़ीगत दूरियां बढ़ने लगी हैं, ये विशेष दिन हमें अपनी व्यस्तताओं को रोककर अपने माता पिता के अमूल्य योगदान पर विचार करने, उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने और परिवार के भावनात्मक बंधनों को फिर से जीवंत करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवसर देता है। उंगलियां पकड़कर मेरी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, उंगलियां पकड़कर जिन्होंने मेरी मुझे चलना सिखाया, खुद भूखे रहे पर मुझे हर निवाला खिलाया, अंधेरों से बचाकर जिसने मेरी राहों को रोशन किया, खुदा से पहले मैंने अपने माता पिता में भगवान को पाया, धूप में जलकर मेरे लिए ठंडी छांव बने, धूप में जलकर मेरे लिए ठंडी छांव बने, मेरी हर छोटी जिद के लिए वो पूरा गांव बने, उनके त्याग का कर्ज ये जीवन कभी चुका ना पाएगा, उनके त्याग का कर्ज ये जीवन कभी चुका ना पाएगा, वो भगवान है मेरे जो इस जमीन पर इंसान बने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अब 1 जून को, जो हाँ जी हर साल हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सुरक्षित भविष्य को संकल्प लेने के लिए मनाया जाता है। इस बेहद महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत वर्ष 1925 में जिनेवा में हुए बच्चों के कल्याण पर विश्व सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसके बाद में 1949 में मॉस्को में वीमेंस इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य, श्रोताओं, ये है कि केवल उत्सव नहीं

0: है, बल्कि दुनिया भर के उन लाखों बच्चों की दयनीय स्थिति और दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना है जो आज भी गरीबी, बाल श्रम, कुपोषण, हिंसा, अशिक्षा और जबरन युद्ध जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये विशेष दिन हर सरकार, समाज और नागरिक को ये याद दिलाता है कि बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं और उन्हें बिना किसी भेदभाव के उत्तम शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और एक ऐसा भयमुक्त, सुरक्षित और खुशहाल वातावरण मिलना चाहिए जहां उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से हो सके। आधुनिक और डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा का दायरा और भी बढ़ जाता है, जिसमें उन्हें साइबर अपराधों, मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा से बचाना भी शामिल है। इसलिए ये दिन हमें अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझने, बाल अधिकारों के प्रति कड़े कानून बनाने और जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का एक अत्यंत संवेदनशील और मजबूत संदेश देता है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, स्क्रीन एडिक्शन और एकाकीपन जैसी कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हालिया आंकड़े श्रोताओं बताते हैं कि आज भी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे कई विकासशील व युद्धग्रस्त क्षेत्रों में करोड़ों बच्चे जबरन मजदूरी, मानव तस्करी, कुपोषण और प्राथमिक शिक्षा के अभाव में अपना बचपन खो रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा केवल माता पिता की निजी जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक वैश्विक सामाजिक दायित्व है। इसके तहत सरकारों को सख्त बाल संरक्षण कानून बनाने, बजट में बाल कल्याण को प्राथमिकता देने और समाज को एक ऐसा समावेशी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है जहां प्रत्येक बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना फलने फूलने का समान अवसर मिले।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और श्रोताओं, बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस की। जी हाँ, जिसे आज हम मना रहे हैं एक महाउत्सव के रूप में, जिसकी आधिकारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में की गई थी, ताकि दूध को केवल एक साधारण पेय नहीं बल्कि एक अनिवार्य वैश्विक संपूर्ण आहार के रूप में स्थापित किया जा सके। और इस बहुमूल्य क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के करोड़ों सीमांत किसानों, पशुपालकों और डेयरी कर्मचारियों की अथक मेहनत और आजीविका को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सर्वोच्च सम्मान दिया जा सके। ये खास दिन इसलिए भी मनाया जाता है श्रोताओं, ताकि भुखमरी और कुपोषण जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ा जा सके, खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और इस उद्योग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनी महिला डेयरी किसानों के अभूतपूर्व योगदान को भी सशक्त रूप से रेखांकित किया जा सके। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस 2026 की मुख्य थीम भी महिला डेयरी किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण पर ही केंद्रित है। साथ ही डेयरी क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल और सतत विकास वाली आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। मानव स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण से नियमित दूध पीने के जादुई और वैज्ञानिक फायदे भी हैं। ये प्रकृति द्वारा वरदान में दिया गया एक ऐसा अमृत है श्रोताओं, जो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी का एक सबसे सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की हड्डियों की सघनता को

बढ़ाकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है और दांतों को वज्र जैसी अभेद्य मजबूती देता है। इसमें मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले केसीन और वे प्रोटीन मांस पेशियों को त्वरित विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी चमत्कारिक रूप से सहायक होता है तथा विटामिन ए, B12, राइबोफ्लोविन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे दुर्लभ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन घटी कुछ खास घटनाओं के बारे में। तो श्रोताओं, 1 जून को घटी घटनाओं के बारे में हम आपको बता दें कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1 जून 1835 से अध्यापन कार्य शुरू हुआ था। 1 जून 1921 में आज ही अमेरिका के इतिहास का सबसे भीषण नस्लीय नरसंहार समाप्त हुआ था। ओक्लाहोमा के टूल्सा में श्वेत उपद्रवियों की भीड़ ने ब्लैक वॉल स्ट्रीट कहे जाने वाले समृद्ध अश्वेत क्षेत्र ग्रीनवुड को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसमें लगभग 300 अश्वेत नागरिक मारे गए और हजारों बेघर हो गए थे। 1 जून 1980 में आज ही ट्रेड टर्नर ने दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल केबल न्यूज नेटवर्क CNN लॉन्च किया था। पहले लोग सुबह या शाम के बुलेटिन में ही खबरें देखते थे। इस शुरुआत ने दुनिया भर में पत्रकारिता और सूचना के प्रभाव का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और अब बात करें आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि 1 जून 1975 में जन्म हुआ था भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी का। उनकी बहनें भारोत्तोलन में थी और उन्हीं से प्रेरित होकर इस खेल में आई। 1993 में अपनी पहली भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। 1994 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में आई जहां उन्होंने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न और पद्मश्री से भी सम्मानित किया। और अब भारतीय हॉकी प्लेयर की बात करें तो अशोक कुमार का जन्म भी 1 जून 1958 में हुआ था। अब बात उन महान व्यक्तियों की जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन 1 जून 1996 में हुआ था और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन भी 1 जून 1987 में हुआ था। और अब श्रोताओं, आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों के बारे में हम आपको बता दें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर आएंगे और सहारनपुर जाएंगे। इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को बिजनौर में होंगे। इनका दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचने का कार्यक्रम है और शाम 4 बजे वो सहारनपुर के लिए रवाना होंगे। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का बिगड़ा मिजाज, आफत, यूपी में आंधी और बारिश से 5 लोगों की मौत। प्रदेश के 56 जिलों में आज भी चलेंगी झोंकेदार हवा, कल से चढ़ेगा पारा। जी हां श्रोताओं, तेज हवा व बूंदाबांदी ने रविवार को भी गर्मी से राहत दी। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में सोमवार को भी झोंकेदार हवा चलने की उम्मीद है। ये खबर है हिंदुस्तान से, लिखता है कि वेलेंसिया, बर्न सहित 5 विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से किया अध्ययन कि गर्मी से समय पूर्व प्रसव का खतरा बढ़ा। समय से पहले बच्चे के जन्म का खतरा 3.8% तक बढ़ा हुआ पाया गया। बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक असर पड़ेगा। जी हां श्रोताओं, 13 देशों में 3.66 करोड़ प्रसव का अध्ययन किया गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़े श्रोताओं बताते हैं कि दोगुनी हुई इंटरनेट उपयोगकर्ता महिलाएं, घरेलू हिंसा घटी। प्रदेश में महिलाओं की डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 वर्ष में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 2 गुनी हो गई। ये खबर है अमर उजाला से और अमर उजाला ही लिखता है श्रोताओं, अब खबरें हम आपको बता दें कुछ खेल जगत से। तो अमर उजाला लिखता है कि RCB की

विराट जीत, बचाया खिताब। गुजरात टाइटंस को फाइनल मैच में 5 विकेट से हराया, कोहली ने नाबाद 75 रन बनाए। कोहली का सबसे तेज अर्धशतक भी रहा इसमें श्रोताओं, जो 25 गेंदों पर बनाया। उनके आईपीएल करियर में खेले गए 283 मैचों में सबसे तेज ये अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने 2018 में राजस्थान के खिलाफ 26 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। और अब बात करें कि सात्विक और चिराग ने जीता सिंगापुर ओपन का खिताब। जी हां श्रोताओं, भारतीय जोड़ी का 2 साल का खिताबी सूखा खत्म। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की पूर्व नंबर 1 भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में नंबर 3 इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को 18-21, 21-17 और 21-16 से पराजित किया। और स्वर्ण की रक्षा के लिए एशियाड में फिर उतरेंगी हरमनप्रीत। मंधाना, सैफाली, जेमिमा समेत बीसीसीआई की लॉन्ग लिस्ट में 33 संभावितों को जगह। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के समाचार पत्रों से सुर्खियां। अब ये की

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 8 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात

0: का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट

0: आओलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ओमिन ओंगलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ओमिन का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकद्दस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ओ मिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी गुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। 1 महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़राअत के बारे में बेतारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़राअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़राअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में 2रे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा اور دفاع اور سیکیورٹی معاملات میں اشتراک کے نئے موقعوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی مثالی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں بھارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا اصول اس تبدیلی کا محرک رہا ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں پر مرکوز متعدد پہلوؤں کا آغاز اور نفاذ کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
1: نریندر مودی حکومت نے گزشتہ 12 سال میں کسانوں کی بہبود اور ان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد پہل قدمیوں کا آغاز کیا ہے۔ ان اقدامات میں سب سے نمایاں پی ایم کسان اسکیم کا آغاز رہا ہے، جو ملک میں فلاح و بہبود سے متعلق سب سے بڑی پہلوں میں سے ایک ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایودھیا کے کسان دنیش کمار جیسوال نے کہا کہ کسان سمان ندھی یوجنا کسانوں کے لیے بے حد سود مند ہے۔
3: پردھان منتری نریندر مودی دوارا چلائی جا رہی کسان سمان ندھی یوجنا کا مجھے بھرپور لابھ مل رہا ہے۔ اس سے مجھے کافی سہایتا ملتی ہے۔ ہم سمے پر اپنے کھاد اور بیج کی خریداری کر لیتے ہیں۔
1: فصل بیمہ یوجنا سے تقریباً 23 کروڑ کسانوں 1,92,000 کروڑ روپے مالیت کے بیمہ دعووں سے مستفید ہوئے ہیں۔ پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کے چھوٹے اور حاشر برادر کسانوں کو 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ پینشن مل رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ایک رہائشی نے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے کسانوں کو روزگار میں مدد ملے گی۔
4: مان دھن یوجنا چل رہی ہے، بہت ہی لابھ دایک ہے۔ پردھان منتری کی تو جتنی بھی یوجنائیں رہی ہیں وہ ساری بڑی مہتوپورن رہی ہیں، کسان کے ہت میں رہی ہیں، اور یہ بڑھاپے میں جو 3,000 روپے کی اس کے ملیں گے، یہ جو بہت ہی بڑھیا ٹائم کی جو ایج کے حساب سے۔
1: کم سے کم امدادی قیمت ایم ایس پی کسانوں کے لیے لائف لائن بن گئی ہے، کیونکہ حکومت نے ایم ایس پی کو پیداوار سے متعلق اخراجات کا 1.5 گنا کر دیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: مشہور و معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا کل ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 89 برس کی تھی۔ انہیں 1950 سے 1970 کی دہائی کے درمیان، جسے فلم موسیقی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، ہندی، مراٹھی اور بہت سی دیگر بھارتی زبانوں میں ان کی گلوکاری کے سبب جانا جاتا ہے۔ سمن کلیان پور کے بارے میں کچھ تفصیل۔
2: سمن کلیان پور 28 جنوری 1937 کو بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہندی فلموں میں پہلی بار 1950 کی دہائی کے وسط میں گانا گایا تھا۔ ان کی آواز لتا منگیشکر کی آواز سے کافی ملتی جلتی تھی۔ انہوں نے اپنی بے حد خوبصورت آواز میں دل کو چھو لینے کے انداز میں تاریخ ساز موسیقاروں، گلوکاروں، خاص طور پر محمد رفیع کے ساتھ سینکڑوں گانے گائے۔ ان کے مقبول ترین گانوں میں سے کچھ گانے یہ ہیں۔

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबका ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक जेरेआब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

सुमन कल्याणपुर को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी नूर महल। गीत के बोलते सबा अफगानी और संगीत था जानी बाबू कव्वाल का। जी हाँ श्रोताओं, कल 31 मई को सुमन कल्याणपुर का आकस्मिक निधन हुआ। पद्म भूषण सुमन कल्याणपुर, जी हाँ, भारतीय सिनेमा की एक बेहद सम्मानित और सुरीली पार्श्व गायिका थी। उन्होंने 1950 से 70 के दशक में हिंदी संगीत जगत को कई अमर और यादगार गाने दिए। 28 जनवरी सन 1937 को ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है श्रोताओं, जन्मी सुमन का परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां संगीत के प्रति उनके गहरे लगाव और नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान मिली। उन्होंने साल 1954 में फिल्म दरवाजा से अपनी फिल्मी सफर करियर की शुरुआत की। अपनी सुरीली, साफ और गंभीर आवाज के दम पर अपनी खास पहचान बना ली। उस दौर में जब सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का संगीत जगत पर दबदबा था, सुमन कल्याणपुर ने न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि अपनी आवाज की खूबी से सबको मंत्रमुग्ध किया। उनकी आवाज और उनकी गायन शैली लता जी से इस कदर मिलती जुलती थी कि कई बार आम श्रोता और यहां तक कि संगीत पारखी भी धोखा खा जाते थे। लेकिन इसके बावजूद सुमन जी ने हमेशा अपनी मौलिकता, संजीदगी को बरकरार रखा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुमन कल्याणपुर ने श्रोताओं शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन और कल्याण जी आनंद जी जैसे दिग्गज संगीतकारों के निर्देशन में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, न तुम हमें जानो, ठहरो जरा और जाने तमन्ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो जैसे एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत गाए। सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ मिलकर कई बेहतरीन और सुपरहिट युगल गीत गाकर उस खालीपन को बखूबी भरा। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी गायिका का जादू बिखेरा। उनके इसी बेमिसाल और अमूल्य योगदान के लिए उन्हें साल 2023 में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया, जो उनके शानदार और गरिमामयी फिल्मी सफर पर एक सुंदर मोहर लगाता है।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मचारी फिल्म का एक गीत। बोलते हसरत जयपुरी के और शंकर जयकिशन का संगीत था और कल 31 मई 2026 को स्वर गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया।

0: जरूरी, हर पल चंदन का एहसास।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अपराध फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध किए गए इस गीत के बोल थे इंदिवर के। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को श्रोताओं भी आप सुन रहे थे सागर फिल्में। गीत के बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था आरटी परमन का। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अंतिम गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम अभिलाषा। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आरडी परमन का।

0: इसी के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकर भी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल है। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं

0: वायरस और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के एवं सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर, करबी, मऊ, राजापुर व मानीपुर तहसील परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, पीजी कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गढ़ थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गांव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी, बांगर, चिलौटा, मुस्तकिल और रायपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गांव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुंचा, वहां अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज 1 विकल्प चुनें, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांव और जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
1: अगर कोई विशेष कार्य हो ही आप इस समय बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेष कर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गांव में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत 2 मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टनिष्ठ हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं ये सुनते हैं भीम सिंह की गाई रागनी।

जाने देखी निरे दण की भेंट

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है मैं श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भीम सिंह की गाई रागनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं बात आसपास की।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बात आसपास की और मैं हूं दिव्यम कंडवाल
1: और मैं इशिका कौशिक।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय सुविधाओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, क्या आपने कभी जाना कि जब बीमारी थोड़ी गंभीर हो जाए तो लोगों की अगली उम्मीद कहाँ होती है?
0: आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर। आइए जानते हैं यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं व इमरजेंसी सेवाओं के विषय में।
1: मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद कुमार, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं?
2: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर नजीबाबाद में सभी प्रकार की ओपीडी की जाती है। एक डॉक्टर एमबीबीएस अधीक्षक मैं हूं और पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर इंद्रराज सिंह हैं जो पीडियाट्रिक्स है ना, बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध। और तीसरे डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर दिलसाद एमडी हैं और डॉक्टर नवनीत सभी चिकित्सक और डॉक्टर यास्मीन जी प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती माताओं का ब्लड प्रेशर और खून की जाँच जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, वीआरएल,

0: बहुत ही प्रशिक्षित सरकार की ओर से दो सीनियर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर जॉन और डॉक्टर महेश्वरी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो छोटे स्टिचेज लगाने हो, एक्सीडेंट वाली चीज हो, जहर वहर खाए वाले मरीज हो या उल्टी के, दस्त के, किसी भी प्रकार के हो, उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी यहाँ उपलब्ध है। 24 घंटे सिलेंडर भी हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 30 के उपलब्ध हैं, 30 बेड के लिए। एक टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, खून पतला करने का और दिल की दीवार में खून का इसी में होता तो उसका रोकथाम के लिए 32,000 रुपए का इंजेक्शन निःशुल्क सरकार की ओर से उपलब्ध है सभी पुरुष सीएससी में। और ये सभी प्रकार की सुविधाएं, कुत्ते के काटने के इंजेक्शन, सांप के काटने के इंजेक्शन और इसके अलावा एक्सरे की सुविधा भी है। एक्सरे किए जाते हैं छाती के भी, पैर के भी, हाथ के भी, फ्रैक्चर के भी। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर समस्त प्रकार की जो बेसिक जांच है खून की, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल जिसमें यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, गुर्दे की जांच, ये सभी जांच की जाती हैं। मलेरिया भी जांच की जाती है, टाइफाइड भी जांच किया जाता है, डेंगू की भी किट उपलब्ध है, डेंगू की भी जांच की जाती है। तो काफ़ी सुविधाएं सरकार की ओर से निःशुल्क सभी प्रकार की सीएससी, नजीबाबाद के अतिरिक्त पूरे जनपद में 11 सीएससी हैं, सभी सीएससी पर ये समस्त प्रकार की जांच उपलब्ध है।
1: सीएससी समीपुर के खुलने का समय बताइए और इमरजेंसी सेवाओं के विषय में बताइए। इमरजेंसी सेवाओं के विषय में हमने डॉक्टर उस्मान से जाना,
2: यहाँ पर सभी जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। मरीजों को पॉइजनिंग केसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, हेड इंजरी, यहाँ पर जो है फर्स्ट एड इमरजेंसी की सुविधाएं हम देकर इनको संदर्भित कर देते हैं मरीजों को जिला अस्पताल के लिए।
1: अगर किसी मरीज को इमरजेंसी सुविधाओं का यूज़ करना हो तो वो किस नंबर पर सबसे पहले डायल?
2: इमरजेंसी सुविधा के लिए उनको मरीजों को 108 डायल करके कॉल करना चाहिए। 108 जैसी वो वहाँ पर EMT रहेगा तो उसको अवेलेबिलिटी के विषय में बताएगा, गाड़ी अवेलेबल है तो उसको शिफ्ट करेगी, अस्पताल लाएगी और यहाँ पर फर्स्ट एड इमरजेंसी के बाद जिला अस्पताल उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा।
3: फार्मेसी डिपार्टमेंट श्री विजय प्रसाद जी से हमने औषधियों के विषय में जाना।
4: हमारे पास इस समय 241 करीब मेडिसिन है, इसमें जीवन रक्षक दवाएं भी लगभग सब कुछ ही हैं और कुत्ते काटे के, सांप के काटे, एंटी स्नैक, एंटी वेनम हमारे पास भी उपलब्ध हैं। बाकी और जो जनरल मेडिसिन होती है वो सब लगभग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास।
1: सर क्या जितनी भी औषधियाँ उपलब्ध हैं उनके लिए कोई शुल्क लिया जाता है?
4: फ्री में होता है सब चीज़, फ्री में।
1: सर विशिष्ट उपचार हेतु कैंसर अथवा टीबी की दवाई हमारे पास उपलब्ध है?
4: कैंसर के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, टीबी की दवाई उपलब्ध है कैंसर के।
3: सर बच्चों के लिए यहाँ पर विटामिन और आयरन की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसका समय क्या है?
4: दवाएं उपलब्ध हैं, बच्चों की दवाएं उपलब्ध हैं, बच्चों के डॉक्टर हमारे पास हैं।
1: इसी क्रम में मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु चौधरी, सीनियर डेंटल सर्जन सीएचसी नजीबाबाद से हुई हमारी बातचीत। मैम आप हमें बताइए कि आजकल मरीजों में क्या डेंटल प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं और इनके समाधान के लिए हमारे केंद्र पर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?
5: देखिए हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से जो मरीज़ हैं, अभी आपने भी देखा जब मैं मरीजों को देख रही थी, तो हमारे यहाँ की जो जेंट्री है मोस्टली उनमें टोबैको च्यूइंग की, तंबाकू की जो इस्तेमाल है वो चाहे बीड़ी के रूप में हो या ड्राई तंबाकू के रूप में या मंजन के रूप में हो, यहाँ के पुरुष और महिलाएँ मेजोरिटी में उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली जितने लोग हैं मुंह की गंदगी से ग्रसित होते हैं तो उनकी सफाई का पूरा इंतजाम हमारे पास है, उसके हिसाब से उनके पूरे मुंह को साफ किया जाता है। अच्छा गर्भवती महिलाएं जब आती हैं खास तौर पे मैं उनमें देखती हूँ वो जिंजिवाइटिस, इस तरीके की परिस, मतलब मसूड़ों की जो बीमारी होती है उससे ग्रसित हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर में जब वो एक महीना अपने घर में उन्हें आराम करना होता है तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि मुंह पे ब्रश मत लगाना नहीं तो दांत कमजोर हो जाएंगे, कुल्ला मत करना नहीं तो दांत जल्दी गिर जाएंगे। हमारे समाज में अभी भी इस तरीके जो मिथ हैं जिनकी वजह से काफी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।
1: एक डेली ओरल डेंटल रूटीन क्या होना चाहिए?
5: देखिए डेली ओरल सिंपल इतना है कि अगर आप अपने सुबह उठ के आपको ब्रश करना है 2-3 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट करिए। मेक श्योर कि जब भी आप ब्रश करें तो अपनी टंग क्लीनिंग, अपनी जीभ की सफाई जरूर करें क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो फंगस, हर बहुत अलग अलग किस्म के इन्फेक्शन होते हैं वो सब लापरवाही की वजह से ही होते हैं। सुबह आप ये करें, खाने के बाद आप कुल्ला करने की आदत डालें क्योंकि बड़ी समस्याएं जब आती हैं तो फिर लिमिटेशन आ जाती है क्योंकि हमारे पास इलाज भी कम होते हैं।
3: आइए जानते हैं एक आशा वर्कर से। मैम आपका नाम?
6: मेरा नाम मोनिका चौधरी है।
3: आप अपना अनुभव बताइए मैम यहाँ पर।
6: हम यहाँ आते हैं लगातार पेशेंट को लेकर, बहुत अच्छा सा यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी डिलीवरियाँ वगैरह अच्छे से होती है, सारी जाँचें होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। पिछले कई सालों से हम लगातार यहाँ 400 आशाएं वर्क कर रही हैं, बहुत आसान है, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सहयोगी स्टाफ है।
1: सफाई कर्मचारी सुरेंद्र कुमार जिसे हमने जाना, सर केंद्र पर सफाई व्यवस्था का किस तरह से ध्यान रखा जाता है?
7: दोनों टाइम जो है झाड़ू पोछा और जो कूड़ा होता है वो गाड़ी आती है सैनर्जी की, उसको पॉलोथीन में बंद करके वो लेकर जाते हैं।
1: स्पेशली मेडिकल वेस्ट होता है कि काफी खतरनाक होता है, तो उसका आप निस्तारण किस तरह से करते हैं?
7: वो जो है सैनर्जी से आती है गाड़ी, वो लेकर जाते हैं, हम पॉलोथीन में उसको पैक कर दे देते हैं, वो ही करते हैं उसको।
1: आपका नाम?
8: देवराज।
1: तो देवराज जी, एम्बुलेंस सेवा के विषय में आप हमें बताइए कि किस तरह से मरीज एम्बुलेंस को अप्रोच करे और किस तरह से कम समय में उस तक इलाज पहुंच सके।
8: ये एक अगर कोई किसी को एक्सीडेंट होता है या कोई मान ली सांप काट लेता है तो उसके लिए 108 डायल करें, तुरंत गाड़ी मिल जाएगी आपको, मरीज को तुरंत पास के अस्पताल में उसको पहुँचाया जाएगा।
1: हमारे CHC समीप पर कितनी गाड़ियाँ लगभग एक्टिव रहती हैं?
8: ये 4 गाड़ियाँ एक्टिव है, 3 102 की और 1 108 की।
1: हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या अपील देना चाहेंगे?
8: हम ये चाहेंगे कि अगर कोई किसी को परेशानी है तो तुरंत 108 को फोन करें और हमें जो है सूचित करें, हम उनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे।
3: बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का अधिकार है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है।
1: श्रोताओं, बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि CHC समीपुर लोगों के लिए एक उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां मरीजों को बेहतर इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं।
3: हालांकि कुछ चुनौतियां जैसे संसाधनों की कमी और बढ़ती मरीज संख्या भी सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद CHC आम लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बना हुआ है।
1: इसी के साथ बात आसपास के आज के अंक में इतना ही। मुझे दिव्यम कंडवाल
3: और इशिका कौशिक
1: को अनुमति दीजिए,
3: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन था इशिका कौशिक और दिव्यम कंडवाल का। मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: हवाओं के संग जो पैगाम लाता है, हवाओं के संग जो पैगाम लाता है, रेडियो हर दिल को मुस्कुराता है।
1: गीत गजल और खबरों को का साथ लेकर, गीत गजल और खबरों का साथ लेकर हर दिन नया एहसास दिलाता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, गीत गजलों के साथ साथ जो हमें देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराता है वो है हमारा अपना साथी रेडियो यानी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी जो जन जन की वाणी कहलाता है वो अपना 90 सालों का सफर पूरा कर चुका है।
0: और इसी सफर की यादों को ताजा करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है
1: सुहाना सफर। जी हाँ श्रोताओं और श्रोताओं, आज इस सफर में हम बात करेंगे साल 2022 के सफर की।
0: और इस सफर में आज हम आपके साथ हैं, इस सफर के हम सफर, मैं ज्योति गौड़
1: और मैं धर्मेंद्र।
0: आप सभी को हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: तो ज्योति, शुरू करें आज का कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन करा देते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम में आगे बात करेंगे। तो कौन सा गीत सुनवा रहे हैं आज आप?
1: चलिए, आज गीत, जब चूंकि बात हो रही है सन 2022 की, तो गीत भी 2022 का ही सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और 2022 में आई थी फिल्म जर्सी, इस गीत को आवाज दी है सचेत टंडन ने। बोल हैं शैली के और संगीत सचेत परंपरा का।
0: तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम है सुहाना सफर। ज्योति, कल क्या तारीख थी?
1: कल 31 मई थी।
0: और दिन?
1: दिन था संडे यानी कि रविवार।
0: नहीं, महीने का आखिरी
1: आखिरी
0: रविवार।
1: दिन
0: और उस दिन
1: बिल्कुल
0: होता है मन की बात।
1: मन की
0: और
1: बात।
0: मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कई अपने मन की बातें बताई, कई लोगों से डायरेक्टली बात भी की।
1: और सभी के विचार भी साझा करते हैं हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सभी देशवासियों को अंतरिक्ष उपलब्धियां, स्वच्छता, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण और आजादी के अमृत महोत्सव जैसे विषयों पर संबोधित करते हैं। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है।
1: और धर्मेंद्र जी, साल 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर रेडियो पर स्वतंत्रता संग्राम, वीर क्रांतिकारियों और भारत के इतिहास से जुड़े विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। स्वराज का ऑडियो संस्करण भी आकाशवाणी नेटवर्क से ही प्रसारित किया गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो स्वराज सीरियल था ना, ये बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत अच्छा था। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो ने 3 दिसंबर 2022 को वार्षिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर प्रसारित किया, जिसका विषय था

0: अमृत काल में भारतीयता।
1: और द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन भी रेडियो ने पूरे देश में प्रसारित किया।
0: बिल्कुल। और एक चीज और है कि जो मतदाता जंक्शन कार्यक्रम भी था ना, वो भी चुनाव आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से मतदाता जंक्शन नामक रेडियो श्रृंखला शुरू हुई थी, अगर आपको याद है तो।
1: बिल्कुल याद है,
0: है ना, जिसमें मतदाता जागरूकता से जुड़ी ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक जानकारी दी गई थी।
1: हाँ, और धर्मेंद्र जी 23 जुलाई सन 2022 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास और उसकी भूमिका पर भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही प्रसार भारती ने ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग्स जैसे स्वतंत्रता दिवस भाषण, संविधान सभा संबोधन और अन्य राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े दुर्लभ ऑडियो प्रसारणों को संरक्षित और साझा किया।
1: और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक गीत और सुनवा दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम में हम अगला गीत कौन सी फिल्म से ले रहे हैं?
0: हमने लिया है गीत, फिल्म का नाम है बधाई हो, और आवाजें हैं देव नेगी, हरजीत कौर की, गीत वायु का और संगीत कौशिक आकाश का।
1: चलिए अब श्रोताओं को सुनवाते हैं कार्यक्रम का दूसरा गीत।

0: कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और आज के इस कार्यक्रम के सफर में हम बात कर रहे हैं साल 2022 के सफर की। और रेडियो का सफर हो और गीत संगीत की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र जी क्या कहते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए आकाशवाणी पे तो फिल्म संगीत अपने आप में एक रोचक है,
0: और रोचकता भी फिल्म

0: आएगा और लास्ट में 26 भी आएगा। तो रेडियो में संगीत संगीत की बातें भी जरूरी हैं और हम इन्हीं सालों के गीत भी आपके लिए लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में। तो गीत संगीत की बात चली है तो आपको बता दें श्रोताओं, साल 2022 में रेडियो चैनलों पर फिल्मी गीतों का काफी प्रसारण हुआ। केसरिया, रंग रसिया, पसूरी, चांद बलियान जैसे गाने श्रोताओं में बहुत लोकप्रिय हुए और इन गीतों को एफएम और एआईआर स्टेशनों पर लगातार सुनाया गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी के साथ साथ मतलब एफएम चैनलों पर भी इस गीतों को बड़ी धूमधाम से सुनाया गया और श्रोताओं का मनोरंजन किया गया। और साथ ही आकाशवाणी ने 2022 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक के माध्यम से राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और क्षेत्रीय संगीत का प्रसारण भी जारी रखा। इसमें देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां सुनाई गई।
0: और श्रोताओं, रेडियो पर पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और भक्ति संगीत का विशेष स्थान मिला। 2022 में भोजपुरी और पंजाबी गीतों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी।
1: बिल्कुल, और सन 2022 में श्रोताओं रेडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर देसी इंडी तथा देसी हिप हॉप संगीत भी काफी लोकप्रिय हुआ। नए कलाकारों और स्वतंत्र संगीत को रेडियो कार्यक्रमों में स्थान मिला।
0: श्रोताओं, त्योहारों और राष्ट्रीय अवसरों पर भजन, सूफी संगीत और सांस्कृतिक गीतों के विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। भूमि 2022 जैसे संगीत अभियानों ने भारतीय लोक और पारंपरिक संगीत को बढ़ावा दिया।
1: रेडियो चैनलों पर 2022 की नई फिल्मों के गीतों के विशेष शो प्रसारित हुए। जैसे फिल्म संगीत को भी श्रोताओं ने पसंद किया, जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक संगीत का भी मिश्रण देखने को मिला था।
0: और धर्मेंद्र जी, पुराने गानों की तो सदाबहार रेडियो पर रहती ही है।
1: बिल्कुल,
0: और रेडियो पर पुराने हिंदी फिल्मी गीतों और स्वर्णिम युग के संगीत पर आधारित कार्यक्रम भी काफी लोकप्रिय रहे। श्रोताओं के लिए विशेष रेट्रो सॉन्ग और गोल्डन हिट्स कार्यक्रम प्रसारित किए जो आज भी हम प्रसारित करते हैं।
1: ज्योति, एक बात तो सुनो।
0: हाँ जी।
1: जब तुमने गीत संगीत की बात चलाई है तो क्यों ना एक गीत और सुनवा दिया जाए अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, और गीत संगीत के लिए ही कार्यक्रम जो है वो ज्यादा और पसंद आएगा हमारे सारे।
1: बिल्कुल, यानी कि ये जो गीत हम आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम को चार चांद लगा देता है। और अपनी प्रतिक्रियाएं भी आप हमारे इस कार्यक्रम की भेज सकते हैं, क्या आप इसमें और सुझाव भेज सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, ना। वैसा तो 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं, 2026 जल्दी आने वाला है। और अब अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म रक्षाबंधन का ये गीत, है ना।

0: चलिए, गीत के बाद अब अपने श्रोताओं को ज्योति कुछ खेल से संबंधित जानकारी भी दे दी जाए,
1: बिल्कुल, और खेल तो बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: है ना। तो इसीलिए 2022 में रेडियो पर प्रसारित कुछ प्रमुख खेल गतिविधियों और उनके बारे में बता दें अपने श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो बताओ फिर।
1: तो श्रोताओं, 2022 में हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैचों की कमेंट्री और विशेष चर्चाएं रेडियो पर प्रसारित की गईं। भारत और पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले को भी श्रोताओं ने खूब पसंद किया।
0: बिल्कुल। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुए। वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और कुश्ती की उपलब्धियों को विस्तार से आकाशवाणी पर बताया गया।
1: और श्रोताओं, 2022 एशिया कप के मैचों की लाइव अपडेट, स्कोर और विश्लेषण रेडियो चैनलों पर सुनाए गए। भारतीय टीम के प्रदर्शन पर विशेष चर्चाएं भी हुई।
0: बिल्कुल। और 2022 फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप से जुड़े मैच अपडेट, खिलाड़ियों की जानकारी, फाइनल मुकाबलों की कमेंट्री और रेडियो पर काफी लोकप्रिय रही। अर्जेंटीना और फ्रांस के फाइनल मैच का तो ऐतिहासिक जो मुकाबला है वो इस पर पूरे विस्तार के साथ सुनाया गया।
1: और धर्मेंद्र जी, 29 अगस्त आपको याद है? 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए भी विशेष कार्यक्रम हुआ था।
0: जी बिल्कुल। देखिए, मेजर ध्यानचंद तो भाई हमारे देश के नूर कह सकते हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: है ना। और खेलो इंडिया अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया गया। विभिन्न राज्यों की खेल प्रतिभाओं की कहानियां भी रेडियो पर सुनाई गई।
1: और भारतीय महिला खिलाड़ियों जैसे वीपी सिंधु, मीराबाई चानू और निखत जरीन की उपलब्धियों पर भी विशेष चर्चाएं रेडियो ने प्रसारित
0: बिल्कुल
1: की।
0: बिल्कुल। और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी द्वारा प्रतिदिन खेल समाचार, लाइव स्कोर अपडेट और विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती रही है, जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद भी किया।
1: और श्रोता हमारे गीत संगीत भी बहुत पसंद करते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका
1: धर्मेंद्र
0: इशारा समझ रहे हैं भाई। देखो, श्रोता तो बिल्कुल पसंद करते हैं और हम भी पसंद करते हैं, और
1: बिल्कुल
0: मैं समझता हूँ भाई, संगीत तो सभी की पसंद है।
1: सभी की पसंद है। संगीत एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप थोड़े से उदास बैठे हो या मन परेशान हो और आप गीत संगीत सुन ले तो आपका मन कहीं ना कहीं अच्छा हो
0: बिल्कुल
1: जाता है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: दिल खुश। तो हम खुश, हमारे श्रोता खुश, तो हम और ज्यादा खुश।
0: बिल्कुल, हम भी खुश। तो चलिए अपने श्रोताओं को और खुश कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: सुनवाते हैं फिल्म भी।

0: गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, कार्यक्रम है सुहाना सफर।
1: धर्मेंद्र जी, हमने बात कर ली खेलों की, हमने बात कर ली गीत संगीत की और ऐतिहासिक चीजों की भी हमने बात कर ली, और अब कहीं ना कहीं जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो विज्ञान के क्षेत्र की भी क्यों ना बात करें।
0: विज्ञान के क्षेत्र की भी करेंगे और पहले तो बात करेंगे भाई आकाशवाणी की।
1: जी,
0: क्योंकि देखो ये सफर 8 जून 1936 से शुरू हुआ और आप पहुंचा है, यानी कि पहुंचने वाला है 8 जून 2026 में और पूरे करेगा अपने 90 साल। और भाई भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए सभी जितने आकाशवाणी केंद्र हैं देश में, सभी अपने अपने केंद्रों से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं इसमें उपलक्ष्य में, कि 90 साल पूरे हो रहे हैं, है ना। हमने भी किए, वॉकेथन की, स्वरांजलि किया, है ना, और श्रोताओं से लगातार बातचीत करते रहते हैं
1: और ये कार्यक्रम काफी सफल भी रहे और हमारे श्रोताओं ने भी खूब पसंद किए। साथ ही साथ सुहाना सफर कार्यक्रम तो हमारे सभी श्रोता पसंद करते ही,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें रेडियो से जुड़ी करते हैं, साथ ही साथ देश दुनिया की बातें भी रेडियो से प्रसारित होती है, तो वो सारी बातें हमने,
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात
1: की।
0: तो यही है कि जो बातें और जो पुराना इतिहास और सन 1936 और हमने जो इस सुहाना सफर का शुरू किया था, जहां तक मुझे याद है हमने किया था सन 1951 से,
1: हाँ जी,
0: है ना, और आप पहुंचे हैं 2022
1: में,
0: बिल्कुल।
1: और 2022 का सफर भी देखिए अब धीरे धीरे पूरा हो ही रहा है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम 2026 तक सफर पूरा करेंगे और कार्यक्रम को पूरा का पूरा सफल बनाएंगे, जैसे हमने और कार्यक्रम सफल किए हैं, अपने वॉकेथन किया, स्वरांजलि की, हमारे श्रोताओं से हमारी बातचीत चल रही है, उनके विचार भी हम जान रहे हैं कार्यक्रम के जरिए, और कार्यक्रम में आगे बढ़े अब थोड़ी सी,
0: बिल्कुल,
1: बात,
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, तो शुरुआत करो फिर।
1: तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अंतरिक्ष उपलब्धियों, उपग्रह प्रक्षेपण और वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित विशेष कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित किए गए। पीएसएलवी C-52 मिशन और EOS-04 उपग्रह लॉन्च जैसी घटनाओं की जानकारी श्रोताओं तक आकाशवाणी ने बखूबी पहुंचाई।
0: इसके अलावा 4 से 10 अक्टूबर 2022 तक वर्ल्ड स्पेस सप्ताह 2022 के दौरान आकाशवाणी पर एक्सप्लोरिंग द स्पेस नामक विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिकों की पुस्तकों और अंतरिक्ष अनुसंधान पर चर्चा की गई।
1: और धर्मेंद्र जी, आपको बता दें और अपने श्रोताओं को भी बता दें कि भारत सरकार के विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत लोकप्रिय विज्ञान आधारित रेडियो कार्यक्रम

0: क्रम पूरे देश में प्रसारित किए गए इन कार्यक्रमों में भारतीय विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को बताया गया था।
1: बिल्कुल, और नेशनल विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान जागरूकता, वैज्ञानिक खोजों और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों को भी रेडियो पर सुनाया गया।
0: इसरो और युविका 2022 कार्यक्रमों से जुड़े जानकारी और अंतरिक्ष शिक्षा पर आधारित चर्चाएं रेडियो पर एवं जन संचार माध्यमों से प्रसारित की गयी। इसमें छात्रों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति प्रेरित किया गया। धर्मेंद्र जी,
1: जी अब घड़ी की तरफ
0: विज्ञान की बातें भी कर ली हमने, श्रोताओं के साथ बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में साझा की हैं और हम आशा करते हैं श्रोताओं को हमारे पसंद भी आई होंगी। लेकिन हमारी घड़ी की सुइयां

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे।
1: और गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ और
0: धर्मेंद्र का नमस्कार।
1: नमस्कार। तो धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है, तो पहले गीत सुनवाएंगे कि कार्यक्रम में मैसेज पढ़ेंगे?
0: देखो, मैसेज भेजने के लिए श्रोताओं को वैसे तो नंबर पता है, लेकिन फिर भी हम अपने नए श्रोताओं के लिए नंबर एक बार बता देते हैं। हमारा नंबर है श्रोताओं 9457078288, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। और ज्योति, देखो कितने मैसेज आना शुरू हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, हमारे पास मैसेज जो है वो लगातार आ रहे हैं और भी आएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले एक गीत सुनवा देते हैं श्रोताओं।
0: नहीं, गीत तो नहीं, लेकिन ये पत्र जो तुम्हारे हाथ में है ना, ये पत्र पढ़ना शुरू कर दो बस, जब तक हमारे और श्रोताओं के मैसेज आए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमें फरमाइश आई है। ये फरमाइश आई है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से। भेजने वाले हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
2: चोटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा।
1: और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब।
2: ये मैसेज मुझे लगता है हम
1: नहीं हमने अभी नहीं
2: पत्र पढ़ा है। पत्र शामिल कर चुके हैं इनका ये वाला, तो अगला मैसेज ले लो।
1: चलिए ठीक है। ऐसे ये अगला मैसेज हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। इसी गीत को सुनने के लिए
2: ये है मीरमपुर बेगा तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से है मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, कासिम पेंटर, डॉक्टर विजय, मोहम्मद रऊफ और अनस शेख।
1: और परी महल कासगंज से ये मैसेज किया है आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इलमा खान, एम असलम, सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीर सराय बदायूं से मैसेज हमें भेजा है आफरीन खान, जमीर खान ने।
2: और ये अगला मैसेज हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, और ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से।
1: ये कार्यक्रम का अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है नई बस्ती गंज डुंडवारा से, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी का।
2: जलालाबाद वेस्ट से ये हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा।
1: और ये मैसेज हमारे पास आया है जिला खरगोन सनावर मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषि वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगपात का।
2: और ये हमारे श्रोता मैसेज के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से।
1: ये मैसेज ये इनका हम पत्र शामिल पत्र, कर
2: हाँ,
1: चुके हैं।
2: बिल्कुल
1: जी।
2: बिल्कुल। तो अगला मैसेज किसका है फिर?
1: महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से हमें ये मैसेज किया है रमेश नचानी, भारती, विनीत और मिथिल नचानी ने। और
2: ये मैसेज शामिल कर चुके हैं।
1: अगला मैसेज जी, हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं धर्मेंद्र जी जो हमें कई कई नंबर से मैसेज करते हैं,
2: कई नंबर से भी करते हैं। और देखिए पत्र जैसे अगर हमारे किसी श्रोताओं के शामिल हो जाते हैं तो वो हमें मैसेज ना करें और दूसरे नंबर से भी मैसेज ना करें, स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है, हमारे कुछ श्रोता रह जाते हैं ना।
1: बिल्कुल। और इसीलिए हम जो है अपने श्रोताओं से कई बार कहते हैं कि श्रोताओं आप एक बार मैसेज करें, बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं
2: बिल्कुल,
1: होती है
2: बिल्कुल।
1: एक बार किया हुआ मैसेज भी हमारे पास आता है और आप चार बार मैसेज करेंगे वो भी आएगा। उससे क्या होता है कि जो हमारे और श्रोता जो है वो बीच में रह जाते हैं।
2: बिल्कुल। कार्यक्रम का जो निरंतरता है ना वो टूट जाती है।
1: बिल्कुल। और देखिए हमने ये इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी बातों में हम दो मैसेज पढ़ सकते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से फिर शुरुआत कर दो।
1: जरूरी है ठीक है। तो ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है सहारनपुर से, भेजने वाले हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग।
2: गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना।
1: और इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें भेजा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान का।
2: और ये मैसेज है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का का।
1: जसपुर उत्तराखंड से ये वाला मैसेज शायद हम पढ़ चुके हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं ये आया है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, भेजने वाले हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा असद, अरहम, मोहम्मद आलम हाशमी। और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे पास आया है
2: मेन रोड तेल्हारा से और भेजने वाले हैं प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर।
1: तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख का।
2: और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म लक्की का ये गीत, आवाज है अदनान सामी की। गीत समीर का है और संगीत अदनान सामी का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अपनी पसंद का कोई गीत सुनना है तो अभी सीधे हमारे स्टूडियो में मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288 94577 78288, और ये मैसेज हमें मिला है निकट बिजली घर

0: मीरगंज से कल्लू मिस्त्री का।
1: अगला मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। भेजने वाले हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैद और जन्नत का।
0: और ये अगला मैसेज दाऊद सराय सहारनपुर से हैं और भेजने वाले हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुवस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से ये मैसेज किया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर ने। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है, भेजने वाले हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवांश शर्मा।
0: और ये मैसेज है नंगला उभन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, भेजने वाले ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: मोताला महाराष्ट्र से मैसेज किया है विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: शाही मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अरफात, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: इसी कार्यक्रम में ये अगला मैसेज हमारे पास आया है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का। ये मैसेज उन्होंने किया है दादरी गेट भवानी से,
0: भिवानी,
1: भिवानी से।
0: हाँ, और गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये हमारे श्रोता मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: ये मैसेज हमें किया है अब्दुल खालिद ने जलालाबाद से। अगला मैसेज किसका है पढ़िए।
0: और ये मैसेज है शास्त्री नगर बीड़ शहर से, भेजने वाले किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, सईरा सिपरकाल और विशाल सपकाल का।
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से ये मैसेज किया है हमें रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।
0: और ये सभी श्रोता ज्योति सुनना चाहते हैं फिल्म चुप चुपके का ये गीत, और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम ने। गीत समीर का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

इसी के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की मुझे यानी धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति, और अब आगे कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ी रहेंगी ज्योति गौड़।

अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: अलका याग्निक और कुमार शानू का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म कूली नंबर वन से। इस गीत को संगीत दिया था आनंद मिलन ने और गीत लिखा था समीर ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है कौन है जो सपनों में आया। संगीत निखिल विनय का है और गीत लिखा है समीर ने।

कौन है जो सपनों में आया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, संगीत अनु मलिक का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गीत आप ही आपने सुना, कुमार शानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कॉकटेल से, आवाजें हैं नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। संगीत प्रीतम का है और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

और श्रोताओं लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत। कुमार शानू की आवाज में फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और गीत लिखा है श्याम राज ने।

कुमार शानू का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म आओ प्यार करें से, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास,

0: कुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
1: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
1: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
0: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
0: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
0: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
1: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक
1: जी,
2: है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
2: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
2: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
2: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
2: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
2: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है। इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
2: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
2: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
2: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
2: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी,
2: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
2: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी,
2: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी,
2: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
2: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
2: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
2: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं।
1: जी,
2: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते हैं।
1: जी,
2: जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
2: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी,
2: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
2: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी,
2: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी,
2: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
2: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी,
2: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।

0: जी, गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी,
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या-क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ के सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए।
0: आसानी से पहुंच जाए,
1: जी
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है,
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिएगा हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत करेंगे बांसुरी पर राग मारवा।

पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

विविधा के अंतर्गत शाम 6:45 पर सुनेगा वीर सिंह से वार्ता। विषय होगा मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। छायागीत सुनेगा शाम 6:55 पर।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा आरएन वर्मा, जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर से हिमांशु रंजन की बातचीत। विषय होगा किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा गन्ने में लाने वाले कीट और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने। कुछ खास है आज गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, कहानी के उस पार और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। शाम 5 बजे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास से आप सुनेंगे। और नई फिल्मों से गीत दोपहर 2:30 पर।

लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर सुनिएगा बालेश्वर और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। परिवार जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर सुनिएगा राजीव अरोड़ा से ज्योतिपाल की बातचीत। विषय होगा गलत खान पान और कैल्शियम की कमी का दांतों पर प्रभाव। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा नीलम संजीव रेड्डी की पुण्यतिथि। चर्चा का विषय होगा विश्व दुग्ध दिवस। और 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलडी। अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, शास्त्रीय संगीत में अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर सुनिएगा हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं बांसुरी पर राग मारवा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं उस्ताद साबिर खान।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे बांसुरी पर राग मारवा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे उस्ताद साबिर खान। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिड डे मेलेडी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म आ अब लौट चलें से। इस गीत को संगीत दिया था नदीम शवण ने और गीत लिखा था समीर ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कोई आपसा से, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत हिमेश रेशमिया का है और गीत लिखा है समीर ने।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लहू के दो रंग से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

लहू के दो रंग। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी से, स्वर लता मंगेशकर का है।

शिवहरि के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चांदनी से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की युगल आवाजों में। संगीत जतिन ललित का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

0: उदित नारायण कार्तिक और साथियों के गाए फिल्म कुछ कुछ होता है केसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलेडी अभी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahava relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. Gross goods and services tax, GST, collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees, state GST at 45,143 crore rupees, and integrated GST at 51,990 crore rupees. Taxable supplies of goods grew 26.9% during the reported period, reflecting domestic demand, while the same for the services sector grew 22.2%, demonstrating structural resilience in domestic consumption. Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to poll on the 18th of this month. Notification for the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha was also issued today. The polling will be held on the 18th of this month. The counting of votes will take place on the same day. The West Bengal cabinet headed by Chief Minister Shubhendu Adhikari was expanded today with the induction of 35 new ministers. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to the new members of the Council of Ministers at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. The legislators sworn in as cabinet ministers include Chopan Das Gupta, Arjun Singh, Tapos Roy and Shankar Ghosh, among others. Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme completed 6 years today. Since its launch in 2020, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed. Hailing the scheme, Prime Minister Narendra Modi said PM Swanidhi has transformed the lives of countless street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion and new opportunities for growth. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked, ranging from 42 rupees to 53 rupees 50 paise. There has been no change in the rates of domestic cooking gas used by households. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in the 73-kilogram category clinched gold medals. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा होनहार तलबा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पूरे नतायज को देख रहा हूं। खास तौर पर आज यहां मुनक्कद तकरीब में जहां 223 तलबा को इजाज़त से नवाजा जा रहा है, जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मेरिट हासिल किए, जबकि लड़कों ने कम मेरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा मेहनत करती और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
4: ये समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेशे नजर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्ता उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत की दाखिली सलामती, अमन अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वजीर आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी और हुकूमत की तरजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा तरीन आदाद शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2000

हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपए फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल वजीर आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वो तूफान, बारिश, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अवलियन तरजीह है।

परिवार जगत कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी दीप्ति माहेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोषक आहार की जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो सेहत, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है, और वो है दूध। दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल उपहार है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमारा साथ निभाता है। नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लिए दूध पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूध के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक करना और दुग्ध उत्पादन से जुड़े करोड़ों किसानों और पशुपालकों के योगदान को सम्मान देना है। दोस्तों, हमारे देश में दूध का संबंध केवल स्वास्थ्य से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं से भी है। भारतीय जीवन में दूध का विशेष स्थान है। पूजा पाठ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, त्योहार हो या पारिवारिक उत्सव, दूध और उससे बने उत्पाद हर अवसर पर शुभता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और कई महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। श्रोताओं, दूध के कई फायदे हैं। दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। बच्चों के विकास में दूध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ते बच्चों को मजबूत हड्डियों और स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त कैल्शियम और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें दूध से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए दूध मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर अभी और भी चर्चा करेंगे, परंतु पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। आज के दिन हमें उन लाखों किसानों और पशुपालकों को भी याद करना चाहिए जिनकी मेहनत से ये अमृत हमारे घरों तक पहुंचता है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है।

0: देश के लाखों किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, इस क्रांति ने दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। इस क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे, जिनके प्रयासों के कारण भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और विश्व स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल हुआ। आज जब दुनिया पोषण और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, तो ऐसे समय में दूध का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुपोषण और पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे समाज के लिए दूध एक प्रभावी समाधान हो सकता है। विशेष रूप से बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए दूध अत्यंत लाभकारी है। इसे सीधे पीने के अलावा दही, पनीर, मक्खन, घी, छाछ, आइसक्रीम और विभिन्न मिठाइयों के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। किंतु हमें दूध की गुणवत्ता और शुद्धता पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूषित और मिलावटी दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वच्छ और सुरक्षित दूध ही जीवन का आधार बन सकता है, इसलिए उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर स्तर पर दूध की गुणवत्ता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज का ये दिन अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमें पशुओं के प्रति संवेदनशील और उनके संरक्षण का भी संदेश देता है। स्वस्थ पशु ही गुणवत्तापूर्ण दूध दे सकते हैं, इसलिए हमें पशुओं के उचित आहार, चिकित्सा, स्वच्छता और देखभाल को भी प्राथमिकता देनी होगी। दुग्ध उत्पादन का संबंध पर्यावरण से भी जुड़ा है, इसलिए आज के आधुनिक समय में हमें ऐसी डेयरी विकसित करनी होगी जो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त करें। श्रोताओं, एक गिलास दूध केवल पोषण नहीं देता, बल्कि उसमें किसानों की मेहनत, पशुपालक का समर्पण और प्रकृति का आशीर्वाद भी शामिल होता है। इसलिए आज के बाद जब भी दूध का सेवन करें, उसके पीछे जुड़े अनगिनत हाथों के योगदान को अवश्य याद करें। तो आइए आज विश्व दुग्ध दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार को महत्व देंगे, दूध तथा दुग्ध उत्पादों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे तथा किसानों और पशुपालकों के योगदान का सम्मान करेंगे और सभी को ये संदेश देंगे कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन दूध है जीवन का अमूल्य धन। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ संक्षिप्त जानकारी विश्व दुग्ध दिवस के बारे में। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। श्रोताओं, कहा जाता है कि एक स्वस्थ मुस्कान हमारे व्यक्तित्व की सबसे सुंदर पहचान होती है और इस मुस्कान की आधारशिला होती है हमारे स्वस्थ दांत। दांत न केवल भोजन को चबाने और पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में सहायक होते हैं, बल्कि स्पष्ट उच्चारण और आकर्षक व्यक्तित्व में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांतों की देखभाल, उनका स्वास्थ्य और उनकी उपयोगिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए एक भेंटवार्ता आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजीव अरोड़ा से बातचीत कर रही हैं ज्योति पाल। तो आइए सुनते हैं ये विशेष भेंटवार्ता।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, ज्यादा मीठा और अनियमित खानपान हमारी आदत बनता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर हमारे दांतों पर कितना पड़ता है? दांतों में सड़न, पीलापन, बदबू और कमजोरी जैसी कई समस्याएं कहीं ना कहीं गलत खानपान से जुड़ी होती हैं। तो कैसे करें इसका इलाज? इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नजीबाबाद के प्रसिद्ध दंत विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव अरोड़ा जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गलत खानपान का दांतों पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है और अधिक मीठा खाने से दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है।
2: देखिए, गलत खानपान हमारे दांतों को ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे शरीर को अस्वस्थ कर देता है। गलत खानपान से हमारा सबसे पहले तो डाइजेशन प्रभावित होता है, और जब हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है तो उससे हमारे मसूड़े काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो खाने के बाद हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखें, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहे, ऐसी हमें चीजें खानी चाहिए। और मीठे का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो दांतों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जो चमकीली परत है मीठा, पहले सबसे पहले उसको नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे धीरे वो परत गलने लगती है, जिसे आम भाषा में ये कह देते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। और कई बार तो अधिक मीठा खाने से हमें शुगर होने की भी समस्या का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, छोटे छोटे बच्चों को हम नहीं मना कर सकते कि तुम मीठा मत खाओ, टॉफी ना खाओ, तो कोई ऐसा उपाय कि बच्चे मीठा तो खाएं पर उनके दांतों को नुकसान ना पहुंचे।
2: देखिए, कोई भी चीज अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते ही हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मीठे से बचना चाहिए। यदि फिर भी यदा कदा हमने उसको ग्रहण किया है, उस मीठे को खाया है, तो उसके बाद हमें अपने दांतों की ठीक से साफ सफाई और एक अच्छा टूथपेस्ट जो हमारे दांतों में सड़न पैदा करने से रोके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड और जंक फूड हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं?
2: जी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो सोडे की मात्रा होती है वो हमारे दांतों की परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और जंक फूड में जो हम चीजें यूज करते हैं उसे बनाने में, वो सब दांतों के लिए बहुत बहुत ज्यादा घातक है।
1: तो इनका उपयोग बच्चे या बड़े कम से कम करें।
2: अगर हो सके तो मैं तो यही कहूंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो बिल्कुल ना करें।
1: बिल्कुल। अच्छा, दांतों का पीलापन और ये बदबू का संबंध हमारे कुछ खान पान की आदतों से होता है, जैसे अधिक तंबाकू का सेवन करना, तंबाकू हुआ और ये पान वगैरह का सेवन जो लोग करते हैं, तो क्या ये हमारे दांतों में बदबू और ये पीलापन फैलाते हैं?
2: जी बिल्कुल, जो पान मसाले में
1: जी
2: कत्था या और चीजें यूज करी जाती हैं, कलर यूज किए जाते हैं, वो धीरे धीरे धीरे हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर, उसकी एक परत चढ़ जाती है, और वो परत धीरे धीरे हमारे दांतों को खराब करने लगती है, हमारे मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़ों में मवाद पड़ जाती है, और उसी कारण हमारे मुंह से बदबू आने लगती है, और उस मवाद से हमारी डाइजेशन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।
1: इसमें चाय कॉफी भी शामिल है?
2: जी, अधिक चाय कॉफी का सेवन करना भी हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है।
1: खानपान की आदतों से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। अब सबसे जरूरी बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम हमारे दांतों के लिए कितना जरूरी होता है, और क्या कैल्शियम की कमी से दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं या जल्दी खराब हो जाते हैं?
2: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कैल्शियम का प्रभाव हमारे दांतों पर अधिक पड़ता है, और कैल्शियम हमें चेक कराते रहना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है तो हमें अपने दांतों को बचाने के लिए कैल्शियम लेना चाहिए, और हमेशा से भारतीय कल्चर में कैल्शियम युक्त चीजें, दूध, दही, इस तरीके की चीजों का प्रयोग होता आया है। उसका मेन कारण यही है कि हमारे दांतों में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल सही रहे।
1: जी, शरीर में कैल्शियम की कमी के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, और आप हमें बताएं कि किन खाद्य पदार्थों से या प्राकृतिक रूप से हम कैल्शियम ले सकते हैं?
2: कैल्शियम की कमी के मुख्य कारण है जो आज बढ़ती हुई फास्ट फूड की प्रवृत्ति है, वो नुकसानदायक हो रही है, और असमय का खान पान ये भी दांतों को काफी प्रभावित कर रहा है।
1: जी,
2: तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमें अपने खान पान को बिल्कुल पारंपरिक ढंग से करना होगा, और जो हमारी परंपराएं रही हैं, दूध की, दही की, मट्ठे की, और जो लोग एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो अंडे का सेवन कर सकते हैं, और कभी कभी हमें जैसे सर्दियों का जो एक बहुत अच्छा मौसम होता है उसमें मीठी धूप का भी सेवन करना चाहिए, और सन बाद भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल पूरी रहे।
1: जी, तो जैसे आपने बात की दूध और दही की, अब उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है, पैकेज्ड फूड ने या जंक फूड ने ले ली है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम की कमी हमारे सभी के शरीर में हो रही है। तो क्या डॉक्टर साहब, कैल्शियम सप्लीमेंट

0: डॉक्टर की सलाह के बिना हम ले सकते हैं कि बहुत सारे सिम्टम होते हैं, खाली दांतों को ही नहीं, ये हमारी पूरी बॉडी को नुकसान करता है कैल्शियम की कमी। मैंने सुना है कि पैरों में दर्द की समस्या, थकान की समस्या हमारी कैल्शियम की कमी से होती है। क्या बिना डॉक्टर की सलाह से अगर हमें सिम्टम दिख रहे हैं तो हम क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं?
1: नहीं, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। इसका प्रयोग चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए, और
0: जी
1: यदि शरीर में कमी है तभी कैल्शियम को लेना चाहिए, वरना ये अन्य प्रकार के नुकसान आपके शरीर में हो सकते हैं।
0: जी प्राकृतिक रूप से या खाद्य रूप से तो हम ले सकते हैं, बट सप्लीमेंट में थोड़ा उसके साइड इफेक्ट होते हैं।
1: जी, आप
0: जी
1: प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ले सकते हैं, उसका कोई विपरीत प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। पर अधिक प्राकृतिक रूप से भी अधिक लेना, यानी कि
0: जी
1: जैसे एक दूध की मात्रा है या दही की है, या आप अन्य अगर आप एग खा रहे हैं तो एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक होगा।
0: जी अगर किसी के दांत कमजोर हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि माता पिता को बच्चों में किस तरह की आदत डेवलप करनी चाहिए कि बच्चे आगे तक उनके दांत स्वस्थ रहें, क्योंकि आज के समय में मैं देख रही हूं सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं।
1: योग्य चिकित्सक के पास जाएं,
0: जी
1: परामर्श करें, अपने दांतों का रेगुलर चेकअप कराएं, और यदि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो वो आपको चिकित्सक खुद सलाह देगा कि आप इस प्रकार का इसमें ट्रीटमेंट लीजिए, इलाज लीजिए, और आपके दांत स्वस्थ हो जाएंगे। अब रही बच्चों के दांत अधिक खराब होने की बात, तो फिर वहीं आ जाता हूं लौट के कि उचित खान पान ना होने के कारण बच्चों के दांत प्रभावित हो रहे हैं। और आजकल जो ये फसलें हम उगा रहे हैं उसमें अधिक यूरिया का यूज होना भी हमारे दांतों के लिए घातक साबित हो रहा है। ये जो केमिकल्स हैं ये जाकर के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में डाल रहे हैं, उससे हमारे दांत ही नहीं पूरा शरीर उसकी चपेट में आ रहा है, उससे नुकसान हो रहा है।
0: डॉक्टर साहब बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपने पापा को देखती थी कि खाना खाने के बाद ना वो बहुत देर कुल्ला किया करते थे, मतलब कभी गर्म पानी से या कभी शायद पानी में हल्दी डाल ली, बहुत देर कुल्ला करते रहते थे। हमें समझ भी नहीं आता था कि क्यों। तो आप बताएं कि क्या कुल्ले करना इतना जरूरी है, और अपनी रोजमर्रा की कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें हम अपनाएं?
1: आप ये समझ लीजिए, कुल्ला करना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: जी
1: क्योंकि जो भी खाना हमारे दांतों में फंस जाता है वो हमारे दांतों को प्रभावित करता है, उससे नुकसान होता है। जब हम कुल्ला करते हैं तो 25 से 40% तक हमारे दांतों की सफाई हो जाती है। जैसा कि एक कहा भी गया है कि अगर आप खाने के बाद एक एप्पल खा लें तो वो 90% तक, 90% आपके दांतों की सफाई कर देता है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोगों की आदत होती है कि एक खाना खाया और एकदम ब्रश कर लिया, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये
0: अच्छा
1: बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस समय हम जब साल्ट की मात्रा लेते हैं तो हमारा एनामल प्रभावित हुआ हुआ होता है। तो खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप ब्रश कर सकते हैं, अगर आपने कहीं जाना आना है तो ऐसा आप कर सकते हैं,
0: अच्छा कुल्ला कर सकते हैं खाना
1: कुल्ला
0: खाने
1: कर
0: के
1: सकते
0: तुरंत
1: हैं।
0: बाद। जी अच्छा एक मैंने बच्चों में आदत देखी है च्युइंगम की। बच्चों को कहो कि इतनी च्युइंगम क्यों खा रहे हो तो बोलते हैं कि दांतों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्या ठीक है ये?
1: जी, दांतों की एक्सरसाइज होती है,
0: जी
1: पर अभी जो नए परिणाम आए हैं, क्योंकि शुगर का इंटेक बच्चों में बढ़ जाता है, उसकी वजह से अब च्युइंगम के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं।
0: जी
1: अब आपने लंच के बाद ले ली या आपने डिनर के बाद ले ली तो चल सकता है, पर वो होता क्या है, धीरे धीरे हम उसको हमारी हैबिट में आ जाता है, और हम फिर 5, 7, 8, 9, 10, 12 च्युइंगम दिन में खाने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में अधिक शुगर पहुंच जाती है और वो नुकसानदायक होती है।
0: डॉक्टर साहब कहा भी गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है। अगर हम किसी भी चीज को एक सीमित मात्रा में लें तो वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, और अगर उसको अति हो जाती है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या केवल दूध ही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, और विटामिन डी का कैल्शियम से क्या संबंध है, हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: दूध बहुत अच्छा स्रोत है अगर वो आपको शुद्ध मिल जाए। अगर शुद्ध मिलेगा तो आपका शरीर सही से वो करेगा। अगर दूध में ही मिलावट होगी तो आप फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको सप्लीमेंट पर ही जाना पड़ेगा। D3 हमारी पूरी शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: विटामिन डी।
1: विटामिन डी
0: जी
1: तो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो पारंपरिक चीजें हैं उनको

0: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनका उपयोग करना है और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को समय देना है।
1: डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी बात कि हम कितने समय के बाद डेंटल चेकअप हम लोगों को कराना चाहिए, अपना भी और बच्चों का भी?
0: कम से कम 6 महीने में एक बार अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए, हमारे दांत स्वस्थ रहें। इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है, सुबह हम जरूर ब्रश करें और रात को जब हम खाने पीने से बिल्कुल फ्री हो जाएं तब भी हम ब्रश करके सोएं, तो इससे काफी हमारे दांतों को लाभ होता है और हमें कम से कम दांतों के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है।
1: हम किस तरह का रूटीन फॉलो करें कि हमारे दांत हमेशा हमारा साथ दें?
0: दांत बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे अगर उनकी साफ सफाई का हम समय पर ध्यान रखेंगे।
1: जी।
0: सुबह हमें ब्रश करना है और रात को सोने से पहले, और मीठे का कम से कम प्रयोग करना है, और जो चिपकने वाली चीजें हैं जो दांतों में चिपकती हैं उनका भी उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि चिपक करके वो हमारे दांतों के ऊपर के एनामल को खराब कर देती हैं और फिर उसके बाद हमारा जो डेंटिन है वो धीरे धीरे वो प्रभावित होकर के हमारी दांतों को दुष्प्रभाव हो जाता है और उसके बाद हमें फिर दांतों के डॉक्टर पर जाकर के उसका इलाज कराना पड़ता है। तो अगर हमें इन सब चीजों से बचना है तो हमें साफ सफाई रखनी होगी और उचित खान पान रखना होगा।
1: डॉक्टर साहब, इसमें ब्रश का कितना बड़ा रोल है हमारे दांतों में, और किस तरह का ब्रश आमतौर पे यूज करना चाहिए?
0: ब्रश हमेशा सुपर सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही मुलायम वाला। और जब हम ब्रश करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कुछ लोग इतना रगड़ के ब्रश करते हैं कि वो
1: जी
0: दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ब्रश बिल्कुल ऐसे करना है जैसे हम पेंटिंग करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत धीरे धीरे, बड़े आराम के साथ, क्योंकि हम जब तेजी में ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़े भी प्रभावित होते हैं और हमारे दांतों का एनेमल, जो हमारे दांतों का सुरक्षा कवच है, वो भी नुकसान में आ जाता है।
1: अच्छा, सुबह शाम ब्रश करना जरूरी है या सिर्फ 24 घंटे में, जैसे रात में सोते हुए हम ब्रश कर लें और सुबह माउथ वॉश यूज कर लें, ऐसा कर सकते हैं, या दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी होता है?
0: देखिए, वैसे तो दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है, पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को आपने ब्रश किया और सुबह आपने कोई आयुर्वेदिक दंत मंजन का, जिसमें बिल्कुल भी किरकल ना हो, मिट्टी ना हो, क्योंकि उससे भी दांतों की परत खराब होती है। तो
1: जी
0: आप शुद्ध वाला मंजन, बड़े अच्छे वाला, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल ना मिला हो या तंबाकू ना हो, वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपके गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होगा।
1: अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि ये बबूल की लकड़ी और नीम की जो दातुन लोग करते हैं, क्या ये वास्तव में हमारे दांतों को अच्छा करती है, फायदा
0: जी
1: पहुंचाती
0: जी
1: है?
0: ये बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, और मैंने कहा था अपनी परंपराओं को नहीं भूलना है,
1: बिल्कुल।
0: ये हमारी परंपरा रही है, भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और बबूल भी, कीकर, ऐसी कुछ चीजें हैं, मिसवाक, ये सब चीजें हमारे दांतों के लिए, हल्दी, हल्दी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्रत्येक दिन थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी थोड़े से पानी में डाल करके अगर उसका कुल्ला करते हैं तो हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक होती है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आशा करती हूँ श्रोताएं इसका लाभ उठाएंगे। तो श्रोताओं, हमने जाना कि दांतों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है संतुलित आहार, सही जीवन शैली और नियमित दांतों की देखभाल, और कैल्शियम जो हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दांतों के लिए भी बेहद जरूरी होता है। स्वस्थ दांत केवल मुस्कान की खूबसूरती नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य की पहचान भी होते हैं। आशा करती हूँ डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य लाभ उठाएंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने दांतों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: अभी हम सुन रहे थे एक भेंट वार्ता, आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, जीवन का सफर तब और भी सुहाना हो जाता है जब हमारे पास हमारे अपनों का साथ होता है, और जब हमारे साथ अपनों का साथ होता है तो लंबे रास्ते भी छोटे लगने लगते हैं और जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसी खूबसूरत एहसास को सुनते हैं एक गीत के माध्यम से।

अभी हमने सुना प्यारा से एक गीत। आशा करते हैं गीत सुनकर आपका मन भी प्रसन्न हो गया होगा। दोस्तों, माता पिता परिवार की वो मजबूत नींव है जिनके प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन से जीवन संवर जाता है। उनकी एकता बच्चों को सुरक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब माता पिता एक दूसरे का सहयोग करते हुए परिवार का नेतृत्व करते हैं, तब घर में प्रेम, सम्मान और सौहार्द का वातावरण बनता है। माता पिता के इसी निस्वार्थ सहयोग को समझने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल आज के ही दिन अर्थात 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों के संपूर्ण विकास, सुरक्षा और पोषण में माता पिता की भूमिका सबसे प्राथमिक होती है। इसलिए उनके त्याग और समर्पण के प्रति सम्मान व्यक्त करना हमारा सभी का कर्तव्य है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी वैश्विक माता पिता दिवस के बारे में। आशा करते हैं कि आप भी अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करेंगे। चलते चलते आपको जानकारी दे रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी के पुण्यतिथि के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। वे भारत के छठे राष्ट्रपति थे और अपने शांत, संतुलित और गरिमामय व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सदैव संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान किया। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि सार्वजनिक जीवन में निष्ठा, विनम्रता और सेवा भाव ही सच्ची सफलता का आधार है। उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्र उनके योगदान को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। तो आइए हम सभी इस महान व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। नीलम संजीव रेड्डी को हमारा सशत नमन। इसी जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमें पत्र अवश्य लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर 246763। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। हम आकाशवाणी के निजी आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बालेश्वर और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बलेश्वर और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। और लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा।

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि।

0: हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर।

0: यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 21 से।
1: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: बेटा मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म 21 से।
2: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है किस किस को प्यार करूं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं लीजिए सुनिए पवन कुमार, सिमरन चौधरी, दिव्या कुमार और साथियों की आवाजों में फिल्म स्त्री 2 से। संगीत सचिन और जिगर का है, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

बॉर्डर टू का गीत अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की युगल आवाजों में। संगीत विशाल मिश्रा का था और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर और साहिल की आवाजों में फिल्म गदर 2 से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और श्रोताओं, लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत, अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एनिमल से।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं नमस्कार। कुछ रिश्ते खून के होते हैं तो कुछ वक्त के साथ खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा ही एक अटूट अनमोल और सदियों पुराना रिश्ता है हमारा और इस जादुई डिब्बे यानी हमारे रेडियो का यानी हमारी आकाशवाणी का। एक ऐसा दोस्त जिसने हमारी सुबह की चाय को सुरीला बनाया, दोपहर के सूनेपन को दूर किया और रात को थपकियां देकर सुलाया। कार्यक्रम है रिश्ता ये खास है। ये कार्यक्रम एक सलाम है रेडियो के उन दीवानों को जिन्होंने इस आवाज को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में जिया है। एक दौर से रेडियो हमारे सुख दुख का साथी रहा है, हमारी जागरूकता का जरिया बना है और संकट के समय में देश की धड़कन भी ये बना है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही अजीज मेहमान हैं जो लंबे समय से इस सफर के गवाह रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ये रिश्ता उनका हमारे साथ और हमारी आकाशवाणी के साथ इतना खास है। हमारे साथ हैं राशिद जी। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो राशिद जी, रेडियो से कितने समय से जुड़े हैं आप?
1: रेडियो से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ, ये समझिए कि मैं बचपन से ही रेडियो से जुड़ा हूँ, लगभग 25 साल से।
0: 25 साल से एक लंबा वक्त आपने गुजारा है रेडियो के साथ। तो जब आपके घर में पहली बार रेडियो आया था तब आपको कैसा लगा और वो रेडियो जो था वो कौन आपके घर में लेके आए थे? उस रेडियो के आने के बाद आपके घर का माहौल कैसा रहा?
1: मेरे घर में जब रेडियो आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो उस समय की एक नई चीज हर व्यक्ति की पसंद थी। पहला रेडियो मेरे फादर लाए और वह रेडियो टेलीविजन जो आजकल रंगीन टेलीविजन है बहुत बड़ा उसकी बराबर था। रेडियो आने के बाद हमारे घर में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और जब गाने वाले कार्यक्रम आते थे तो मोहल्ले के लोग हमारे घर में संगीत सुनने के लिए इकट्ठा हो जाया करते।
0: अरे वाह क्या बात है, एक रोमांचकारी माहौल रहता होगा।
1: जी जैसे कि शादी का आजकल माहौल होता है इस तरह का हो जाया करता।
0: जी। तो देखिए समय बदला, रेडियो के मॉडल बदले, रेडियो के कौन कौन से मॉडल आपको याद है?
1: जी, सबसे पहले मैंने रेडियो का वह मॉडल देखा जो आज के बड़े टेलीविजन की बराबर था और वह बिजली से संचालित होता था। उसके बाद एक रेडियो और देखा जो एक बैठने वाली बेंच की तरह से होता था, चौड़ाई काफी ज्यादा थी, ऊंचाई कम थी। उसके बाद हमने फिलिप्स, मर्की, जोली और आज काफी रेडियो देखे और आज तो हम बिना सेल का रेडियो इस्तेमाल करते हैं चार्ज वाले।
0: जी, बिल्कुल। अच्छा, बीच में कुछ रेडियो ऐसे भी आए थे जो जिन्हें हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, जेब में भी रख सकते थे और कहीं भी अपने साथ ले जा सकते थे?
1: हाँ, मैंने वो रेडियो भी देखा और रेडियो के लगभग 20 मॉडल आज भी हमारे घर में रखे, एक खोखे में रखे हुए पैकिंग हुए हैं और जब कोई फंक्शन हमारे घर में होता है तो हम उन्हें एक अलमारी में सजा कर रख देते, म्यूजियम की तरह से, संग्रहालय की तरह से, लोग उन्हें देखते हैं।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको याद हैं? आप 25 साल से हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद से जो प्रोग्राम प्रसारित होते थे और इन कार्यक्रमों में आपने क्या क्या बदलाव देखे? कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो लगातार हमारे नजीबाबाद से अभी तक प्रसारित हो रहे हैं शुरू से जब से आपने रेडियो सुना है?
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे उनमें गुलदस्ता, कृषि जगत और एक मन भावन कार्यक्रम होता था जो प्रेम कुमार सडाना जी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते थे, सप्ताह में 2 बार, बुध में दोपहर को और शुक्रवार में रात को आता था
0: जी।
1: शाम 5 बजे गीतों भरी कहानी आती थी जो बहुत अच्छी लगती थी, इसे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। और एक यूथ फोरम कार्यक्रम था जिसका रूप आज हेलो नजीबाबाद ने ले लिया है और गीत तुम्हारे कार्यक्रम पहले आता था का रूप आज भी है और आपकी फरमाइश मन भवन कार्यक्रम का रूप आज गीत तुम्हारे कार्यक्रम और आपकी फरमाइश ने ले लिया है और आज गुलदस्ते का रूप दिल ने फिर याद किया वह रात के हम सफर में ले लिया है।
0: और रेडियो आपकी जिंदगी में
2: किस तरह से खास रहा, किस तरह से रेडियो ने आपकी जिंदगी को आसान बनाया और बदल दिया है?
1: मैं बताना चाहता हूँ विवेक जी, के रेडियो ने मेरी जिंदगी को नहीं बल्कि मेरे कैरियर को भी आसान बना दिया
2: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार समाचार तो रेडियो से मिल पाते थे पहले, आजकल तो इम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो मिल जाती थी, लेकिन उस समय हमें जॉब से जुड़ी जानकारी रेडियो से मिलती थी। और जब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था तो धीमी आवाज से रेडियो बजाकर स्टडी कर लेता था
2: जी।
1: और आज भी जब मैं अकेला घर पर रहता हूँ तो रेडियो सुनकर आसानी से अपना समय व्यतीत हो जाता है, और रेडियो मेरे एक साथी है।
2: सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक, मतलब रेडियो आपके साथ अब भी जुड़ा हुआ है।
1: जी हाँ, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, जब तो कॉलेज में नहीं चला सकते।
2: तो राशिद जी, ये हमारा जो दौर चल रहा है ये एक डिजिटल दौर है, यहाँ मनोरंजन के तमाम तरीके हमारे पास मौजूद हैं। हम चाहे टीवी देख लें, चाहे हमारे पास रेडियो है या मोबाइल, तमाम रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन रेडियो ने अपना जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं बदला है। तो आपके लिए रेडियो और आकाशवाणी नजीबाबाद आज भी क्यों इतना खास बना हुआ है?
1: डिजिटल दौर में भी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत तरीके हमारे मनोरंजन के हैं, लेकिन रेडियो को न तो किसी नेटवर्क की बाध्यता है और न ही बैलेंस डलवाने की जरूरत है, हर समय चलता रहता है, एक बार ले लो और जिंदगी भर का साथ। दूसरी चीज ये है विवेक जी के रेडियो को हम अपना कार्य करते हुए भी सुन सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: घर में तो क्या गृहिणी भी, वह सीमा पर हमारा जवान और खेत में हमारा किसान भी आसानी से अपना कार्य करते हुए रेडियो सुन लेते हैं।
2: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी व्यक्ति जो भी अपना काम कर रहा है वो काम करते हुए अपना दिल लगाकर काम कर सकता है और रेडियो उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाता।
1: और आकाशवाणी नजीब बात की, जब आपने बात की तो आकाशवाणी नजीब बात से सुबह के समय सूरज के साथ साथ इसमें हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है, किसी घटनाओं की जानकारी मिलती है, दैनिक समाचार मिलते हैं, मनोरंजन मिलता है। और नजीब बात से छात्रों के लिए भी कार्यक्रम आते हैं, बच्चों के लिए नीला की दुनिया आती है, किसानों के लिए कार्यक्रम वे तेरे नसीब से भी आता है जिससे कि लोगों का मन बहलाया जाता है। और हेलो नजीब बात जो हमारे श्रोताओं के दिलों की धड़कन है और पूरे भारत के भौगोलिक परिवेश की जानकारी भी हमें श्रोताओं से मिल जाती है।
2: ये देखिए, ये हमारा कार्यक्रम है रिश्ता ये खास है, क्योंकि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इन 90 वर्षों में कोई आपकी कोई ऐसी खास याद है? देखिए आप 25 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके घर में भी कोई 25 साल पहले से कोई जुड़ा हुआ होगा, ऐसी कोई उनके साथ आपकी याद जुड़ी हुई हो तो वो हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप?
1: ऐसी याद मेरी ये है कि अगर मैं छत पर भी सोने जाता हूँ तो रेडियो साथ ले जाता हूँ, और कहीं बाहर भी बैठने जाता हूँ तो रेडियो साथ ले जाता हूँ। हर समय मेरा रेडियो साथ है, बस कॉलेज नहीं जा पाता।
2: कोई बात नहीं, देखिए रेडियो से आप इतना समय से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने ही रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा। हमसे बात करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आज हमारे खास मेहमान के साथ बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। आज एक बार फिर से ये साबित हो गया कि सुइयां चाहे घड़ी की हों या रेडियो के ट्यूनर की, जब वो सही जगह टिकती हैं तो जिंदगी में गुजरा हुआ खूबसूरत दौर लौट आता है। वाकई रेडियो सिर्फ एक आवाज नहीं, हमारी पूरी जिंदगी का गवाह है। वो दौर जब हमारे पास साधन कम थे तब भी इस दोस्त ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया। जब देश के सामने चुनौतियां आईं, संकट या आपातकाल आया, तब इस आवाज ने हमारा हाथ थाम कर हमें हौसला दिया और जागरूक किया। आज मोबाइल के इस दौर में भी इस बूढ़े मगर सच्चे दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सचमुच रिश्ता ये खास है। आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी यादों की और अपनी यादों की महकती पोटली खोलने के लिए हमारे मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी श्रोताओं का भी आभार जिन्होंने इस सफर में हमारा साथ दिया। अब रिश्ता ये खास है कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए चेहरे और पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो, सजग रहिए और सुरक्षित रहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज रात 10 आप आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज क्रम रहेगा कहानी के उस पार, क्रैश कोर्स पैसा वसूल और गपशप अड्डा। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आरएन वर्मा जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर से हिमांशु रंजन की भेंट वार्ता का विषय होगा किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका।

विविधा कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी वार्ता जिसका विषय होगा मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। वार्ताकार होंगे वीर सिंह। सुगम संगीत में हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:32 पर सिमरन सैनी की आवाज में भजन। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 6:55 पर छाया गीत कार्यक्रम में। रात 8 बजे गीत संध्या में, 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में और रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस का संगीत में प्रसारण होगा कल सुबह 6:30 पर। कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में होगा आदर्शनी श्रीवास्तव का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 7:05 पर जानकारी का विषय होगा प्राकृतिक भोजन का त्वचा पर प्रभाव। कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी जिसका विषय होगा बीज उपचार करने का सही तरीका। सूरज के साथ साथ जानकारी और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम होगा हर रोज की तरह पूर्वाहन 7:31 पर। कल सुबह 9:25 पर मृदुला निगम के स्वर में प्रसारित होंगे रुहेलखंडी लोकगीत कार्यक्रम होगा धरती गाती है बात आसपास की। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे कल पूर्वाहन 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों पर आधारित कार्यक्रम सुहाना सफर का वक्त रहेगा हर रोज की तरह कल सुबह 10:00। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा कल सुबह 11:30 पर।

महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल अपराह्न 1:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम में गढ़वाली लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे कल दोपहर 1:45 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हर नई शुरुआत अपने साथ एक कहानी लाती है, उम्मीदों के रंग खुशियों की रवानी लाती है। जो बीत गया उसे मुस्कुराकर विदा कीजिए और जो आने वाला है उसका दिल से स्वागत कीजिए।
1: जैसे हम आ गए हैं अपने टाइम पर आपसे मिलने, तो स्वागत की शुरुआत हमसे ही कीजिए।
0: जी हाँ दोस्तों, जून की धमाकेदार शुरुआती शाम में हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी।
1: और सलोनी के साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त। और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वेकेशन की शुरुआत में ही सेगमेंट का पिटारा।
0: और दोस्तों, शुरुआत में ही आपसे गपशप कर

5707828। अब हमारे दोस्त सलोनी ये सोच रहे होंगे कि भाई कमेंट तो करना ही है, अब ये नंबर क्यों डायल करना है। तो दोस्तों भूलिएगा मत, आज है मंडे और मंडे को रहता है हमारा सेगमेंट गपशप अड्डा, और आपको हमसे जुड़ना है और हमसे ढेर सारी बातें करनी है तो नंबर तो डायल करना ही पड़ेगा। तो चलिए आप करिए अपना काम और हम करते हैं अपना काम, ले चलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों, हम आपसे करेंगे आज ढेर सारी गपशप, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी देना तो बनता है। फिर आराम से हम करेंगे आपके साथ गपशप। तो दोस्तों, आज है मंडे और मंडे होता है हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज क्रैश कोर्स पैसा वसूल में क्या जानकारी मिलने वाली है हमें। वसूल पैसा वसूल, जी हाँ दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा ये तो सच में पैसा वसूल है। क्रैश कोर्स पैसा वसूल यानी जहाँ हम कम समय में जान लेते हैं किसी भी टॉपिक की पूरी जानकारी। और आज का सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। हम सब घड़ी देखते हैं, मोबाइल में समय देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर दुनिया का सही समय कौन तय करता है? अगर आपकी घड़ी और मेरी घड़ी में फर्क आ जाए तो असली समय कौन सा माना जाएगा? तो इसका जवाब है एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी। अब नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये कोई बहुत भारी भरकम वैज्ञानिक चीज होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। पहले के समय में लोग सूरज की स्थिति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे, फिर पेंडुलम वाली घड़ी आई, उसके बाद क्वार्टर्स घड़ी आई। लेकिन साइंटिस्ट को ऐसी घड़ी चाहिए थी जो लगभग कभी गलती ना करे। काफी खोजबीन के बाद वैज्ञानिकों की नजर परमाणुओं पर गई। उन्होंने पाया कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो हमेशा एक निश्चित लय में कंपन करते हैं। करोड़ों बार कंपन करने के बाद भी उनकी गति में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। यहीं से एटॉमिक क्लॉक पर विचार पैदा हुआ। अब सवाल आता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करती है, इसका सिद्धांत आखिर है क्या? दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गायक है जो हर बार बिल्कुल एक ही सुर में गाता है, चाहे सुबह हो या शाम, उसकी आवाज का सुर नहीं बदलता। अब अगर कोई संगीतकार उसी सुर पर अपना वाद्य यंत्र मिला ले तो दोनों एकदम तालमेल में आ जाएंगे ना। एटॉमिक क्लॉक भी कुछ ऐसा ही काम करती है। इसमें आमतौर पर सीजियम नाम के एक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। सीजियम परमाणु की एक खास प्राकृतिक फ्रिक्वेंसी होती है, यानी वो एक निश्चित दर से कंपन करते हैं। घड़ी के अंदर सीजियम परमाणु पर माइक्रोवेव तरंगे भेजी जाती हैं। अब इन तरंगों की फ्रिक्वेंसी और परमाणु की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है बिल्कुल मैच कर जाती है, तो परमाणु एक विशेष एक्टिविटी देने लगता है। इस एक्टिविटी से मशीन को पता चलता है कि अब सही आवृत्ति मिल गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसी आवृत्ति को आधार बनाकर समय गिनना शुरू करता है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो एटॉमिक क्लॉक समय को किसी स्प्रिंग, पेंडुलम या घड़ी की सुई सी नहीं, बल्कि परमाणुओं के नियमित कंपन से मापती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी सटीक होती है, तो जरा सोचिए, हमारी सामान्य घड़ी जो होती है कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सेकेंड आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक इतनी सटीक होती है दोस्तों कि लाखों वर्षों में भी इसमें सिर्फ कुछ सेकंड की ही गलतियां देखने को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बिल्कुल भी गलती देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद घड़ी माना जाता है। लेकिन इसका उपयोग सिर्फ समय देखने के लिए नहीं होता, बल्कि जब आप मोबाइल में GPS खोलकर किसी जगह का रास्ता ढूंढते हैं, तब सैटेलाइट लगातार समय के बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस को माप रही होती है। ये काम एटॉमिक क्लॉक की मदद से ही संभव हो पाता है। अगर एटॉमिक क्लॉक में एक सेकंड की भी गड़बड़ी हो जाए ना दोस्तों, तो GPS आपकी लोकेशन कई किलोमीटर दूर दिखा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट संचार, इंटरनेट नेटवर्क, मोबाइल टावर और वैज्ञानिक प्रयोगों में भी एटॉमिक क्लॉक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे एक रोचक बात और जान लीजिए दोस्तों, कि आज दुनिया भर में एक सेकंड की जो आधिकारिक परिभाषा मानी जाती है, वो भी सीजियम परमाणु के कंपन पर ही आधारित है। यानी हम जिस सेकंड, मिनट और घंटे की बात करते हैं, उसकी नींव भी कहीं ना कहीं एटॉमिक क्लॉक पर ही टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज की पैसा वसूल जानकारी ये थी कि एटॉमिक क्लॉक दुनिया की सबसे सटीक घड़ी है जो परमाणु के नियमित और निश्चित कंपन के सिद्धांत पर काम करती है। यही वजह है कि आधुनिक टेक्निक की दुनिया में इसका बेहद खास महत्व है। अब जब भी आप अपने मोबाइल में समय देखेंगे या GPS में रास्ता ढूंढेंगे, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई एटॉमिक क्लॉक पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। इसी दिलचस्प जानकारी के साथ आज का क्रैश कोर्स पैसा वसूल यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ, जिसे सुनकर आप फिर से कहेंगे ये तो सच में फुल पैसा वसूल है।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे
2: और जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
3: भाभी जी, आपके पति कहाँ है?
5: अरे वो तो अभी ऑफिस गए हैं, क्या हुआ?
3: देखिए, ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, लेकिन है भी। देखिए ये लीजिए, ये मेरा पर्स रखिए आप, ये मेरा सूट भी रखिए, और ये लीजिए मेरी सैंडल्स भी रखिए, मेरी चूड़ी भी रखिए, और ये मेरे जो दो तीन जोड़ी कपड़े लेके आई हूँ मैं, ये भी रखिए, और हाँ मेरी हेयर एक्सेसरीज ये भी रख लीजिए, ये सब रखिए आप।
5: अरे आखिर बात क्या हुई, आप ये सब मुझे क्यों दे रही हैं?
3: देखिए भाभी जी, बात ये है, मैं जब भी सोशल मीडिया पर कोई अपनी फोटो या वीडियो पोस्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहला कमेंट आपके पति का आता है, भाभी जी नाइस पर्स, भाभी जी नाइस सूट, भाभी जी नाइस सैंडल्स। और कल तो हद हो गई, कल की तो पूछो मत भाभी जी आप।
5: क्या हुआ मुझे भी तो बताओ, कल क्या हुआ ऐसा?
3: पता है कल क्या कह रहे थे आपके पति देव? कल कह रहे थे, अरे भाभी जी चेहरे पे क्या लगाती हैं, आजकल बहुत निखर रही हैं।
5: अच्छा ये बात है?
3: हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, ये पर्स सूट क्रीम सब आप ले जाओ।
5: नहीं नहीं भाभी जी, एक काम करिए, ये सारा सामान आप वापस ले जाइए, बस ये सैंडल्स यहाँ छोड़ दीजिए। अगर आपकी सैंडल्स शाम तक बच गई तो इनको भी भिजवा दूंगी मैं, आने दो इनको जरा।
4: मजा आ गया।
6: दोस्तों, आपको देंगे जानकारी, लेकिन उससे पहले मेरा मन है आपसे गपशप करने का, तो शुरू करते हैं।
7: हेलो 9457078288,
8: कौन बोल रहा है?
9: ये है गपशप अड्डा।
8: ये है गपशप अड्डा।

0: देखते हैं उज्मा हमारे प्यारे लिसनर्स कौन है जिनकी कॉल लगी है। हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है उज्मा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हेलो, लगता है हमारे लिसनर्स हमसे रूठ गए हैं।
1: नहीं सलोनी, हमारे लिसनर तो हमसे रूठ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता।
0: तो मुझे लगता है पहले हम एक और सॉन्ग सुनवा दें।
1: बिल्कुल,

0: महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: सलोनी देखो, हर दिन खास होता है, हर दिन का एक एहसास होता है, और हर दिन खास तभी होता है जब माँ बाप का साथ होता है ना?
2: जी बिल्कुल। तो जो हमारा हर दिन खास बनाते हैं, उनके लिए हमें भी तो कुछ खास दिन मनाना चाहिए ना, हमारा फर्ज है ना, ताकि हम उनके प्यार और स्नेह की वैल्यू को समझें।
1: और इसलिए आज 1 जून को ये खास दिन रखा गया है, जो पूरे वर्ल्ड में विश्व अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: दोस्तों, माता पिता का प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं होता, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीते हैं
1: और बदले में मांगते भी कुछ नहीं।
2: तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि हम हमारे पेरेंट्स की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने साथ उनको रेस्पेक्ट दें उनकी हर बात मानकर, और इस दिन की असली वैल्यू को समझें। और अब वैल्यू को समझते हैं हम हमारे लिसनर्स की, और करते हैं उनसे थोड़ी सी गपशप। तो देखते हैं हमारे अगले लिसनर्स कौन है।
0: देता है।
2: हेलो।
0: और हम जीवन की तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
2: हेलो
3: सुरभि।
0: हाँ,
3: मुझे लगता है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा भी देता है।
2: बिल्कुल, कि हमारे लिसनर्स हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
4: हाँ बहन जी, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको।
2: अच्छा, हेलो सर।
4: हाँ सर, आ गई आ गई।
2: जी जी सर, हमें भी आपकी आवाज आ गई और बहुत ही मधुर आई है। तो बताइए सर, हमारे कौन से लिस्ट से बात कर रही
4: है? बहन जी, मुझे तो मिल रही थी आवाज, लेकिन आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही।
2: जी जी सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो सर बताइए।
4: सही है, सही है।
2: कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया हूँ।
2: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी कौन से लिस्नर से बात हो रही है।
4: हाँ मैं बता रहा हूँ, ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
2: जी जी मांगीलाल जी, आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं, तो बताइए कैसे हैं आप?
4: मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
2: जी जी हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आप ये बताइए, आपकी गपशप अड्डा में कॉल लगी है, तो आज आपके मन में क्या बात है बताने के लिए?
4: आज मेरे मन में बात क्या बताऊं जी, अब सब बढ़िया है और आपसे बात हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है।
2: जी जी, तो आपको पता ही है ये सेगमेंट है गपशप अड्डा, इसमें हम आपकी फरमाइशों को पूरा करते हैं। तो बताइए आज जी, हमारे जी, लिए क्या हुक्म है?
4: हुक्म यही रहेगा, मूवी का नाम तो रहेगा गंगा यमुना सरस्वती, और सॉन्ग के बोल रहेंगे चूड़ियां कनकी कनकाने वाले आ गए।
2: अरे वाह, आपने तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और बहुत ही प्यारी मूवी का बताया है।
4: जी जी जी।
2: तो चलिए फिर बिना देर किए सुनते हैं आपका ये प्यारा सा सॉन्ग।
4: तो मैं कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
2: जी जी सर, आप अपने सारे मित्रों को याद कर सकते हैं।
4: जी, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, मकसूद हुसैन जी हैं, और राजा हुसैन जी हैं, मोहम्मद वक्कार फरीदी जी हैं, विष्णु अग्रवाल जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
2: तो ठीक है, आपकी डेडिकेशन को पूरा करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट-पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: हेलो हेलो, रूम सर्विस।
5: बताइए सर, आपको कुछ ऑर्डर करना था?
4: अरे ऑर्डर नहीं, मुझे शिकायत करनी है।
5: शिकायत? बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है?
4: अरे वो मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया है, तो वो खिड़की से कूदने जा रही है।
5: लेकिन सर, ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना?
4: लेकिन खिड़की नहीं खुल रही, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
6: दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि आज हम लाए हैं आपके लिए सेगमेंट्स का पिटारा, जो हम धीरे धीरे एक एक करके खोल रहे हैं। अब देखते हैं इस पिटारे में क्या है। उज्मा, मुझे इस पिटारे में दिख रहा है कहानी के उस पार।
7: तो फिर जल्दी से करो शुरुआत कहानी के उस पार की।
6: तो सुनिए दोस्तों, कहानी के उस पार जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी घर जमाई। तो सुनते हैं इसका पहला एपिसोड।
5: हेलो दोस्तों, कहते हैं रिश्ते प्रेम और सम्मान से बनते हैं, लेकिन जब सम्मान खो जाए तो अपने भी पराए लगने लगते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक कहानी। कहानी का नाम है घर जमाई, जिसका आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 1। ये कहानी है

हरिधन की, एक ऐसे युवक की जिसने अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपने सपनों तक को ससुराल के नाम कर दिया। उसे लगता था कि उसे वहां अपना घर, अपना परिवार और अपनों का प्यार मिलेगा। लेकिन समय के साथ रिश्तों के रंग बदलने लगे, आदर की जगह उपेक्षा ने ले ली और अपनापन धीरे धीरे बोझ बन गया। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की दिल को छू जाने वाली ये कहानी, जिसका आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 1। हरिधन जेठ के महीने की दोपहर में गन्ने के खेत में पानी देकर लौटा और घर के बाहर आकर बैठ गया। घर के अंदर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। बर्तन चमकाने की आवाज छन छन करके आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर के अंदर चले गए। दोनों साले के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर चले गए, पर हरिधन अंदर नहीं जा सका। पिछले एक महीने से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था, वो उसी की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा था। और खासकर कल उसे जैसी डांट सुननी पड़ी थी, वो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह जकड़ गई थी। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा दिल तुमसे भर गया है, क्या हमने तुम्हारी जिंदगी का ठेका ले लिया है? और सबसे ज्यादा उसकी अपनी पत्नी की बेरहमी उसके दिल के टुकड़े कर चुकी थी। वो ये सब बैठी सुन रही थी, पर एक बार भी उसके मुंह से ये नहीं निकला, अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो? वो चुपचाप बैठी सब कुछ सुन रही थी। शायद हरिधन की बुरी हालत पर वो भी हंस रही थी। यही सब सोचकर वो अंदर नहीं जा पा रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं अंदर गया तो फिर वही गालियां खाने को मिलेगी, वही डांट सुनने को मिलेगी। हरिधन मन ही मन सोच रहा था, मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ, दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को चारा पानी देता हूँ, घास काटता हूँ, वो सब लोग एक एक करके हुक्का पीते हैं और मैं आंखें बंद करके अपने काम में लगा रहता हूँ। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजारने के बाद ये हाल हो रहा है। शाम के समय घर वाले गाना बजाना सुनने चले जाते हैं, मैं आधी रात तक गाय भैंस दूहता हूँ, उसका ये इनाम मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियां ही मिलती है। हरिधन की पत्नी घर से बाल्टी लेकर निकली और बोली, जरा कुएं से पानी खींच लाओ, घर में पानी की बूंद नहीं है। हरिधन ने बाल्टी ली और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी, उसने समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर पत्नी बाल्टी लेकर अंदर चली गई तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका हारा भूख से परेशान पड़ा रहा। इसके बाद उसकी पत्नी गुमानी ने दोबारा आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या सोने भी नहीं दोगी क्या, या और पानी चाहिए? गुमानी ने कड़वे स्वर में कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो, खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और साले के दोनों बड़े बेटे खाना खाकर चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई, मेरी अब ये हालत हो गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ क्या? मैं इनका कुत्ता नहीं हूँ जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है। ये वही घर था जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सम्मान होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास फूले न समाती थी, पत्नी पूजा करती थी, तब उसके पास रुपये हुआ करते थे, अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके अंदर एक ज्वाला सी फट गई। मन किया कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और बाकी सारे सदस्यों को सुना दे, फटकार लगा दे, पर खुद को रोक लिया। पड़े पड़े बोला, जाओ मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने बड़ी अकड़ से कहा, ना खाओगे तो मेरी बला से, मेरा कौन सा कुछ बिगड़ रहा है, खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ा आ जाएगा। हरिधन का गुस्सा आंसू बन गया। ये मेरी पत्नी है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, मुझे उल्लू बनाकर अब ये लोग मुझे निकाल देना चाहते हैं, वाह रे जिंदगी वाह, अब करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं? हरिधन ये सोचकर रो दिया। उसकी आंखों से आंसू धारा बनकर बह निकले। हरिधन की आंखों में आंसू थे, दिल में अपमान की आग थी, और सामने था अपना ही बनाया हुआ वो घर

0: जहां अब उसके लिए सम्मान और अपनापन दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। जिस परिवार के लिए उसने अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी थी और कुछ बेचकर अपनी सास को दे दी थी, आज उसी परिवार में उसे एक बोझ समझा जाने लगा था। क्या हरिधन इस अपमान को सहता रहेगा? क्या उसकी पत्नी गुमानी कभी उसके दर्द को समझ पाएगी? और क्या हरिधन को अपने जीवन का खोया हुआ सम्मान मिलेगा? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं इसी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 में।
1: चलो उज्मा, अब चलते हैं हम वापस अपनी गपशप की ओर। हमारे दोस्तों ने कहानी भी सुन ली और देखते हैं हमारे अगले लिसनर कौन है। हेलो।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते सर। सर, कौन से लिसनर से बात हो रही है हमारी?
2: मैं शाही मार्केट से वाला गिला दूधों से आशीष चौधरी बात कर रहा हूँ मैम जी।
1: जी सर, बताइए कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आकाशवाणी में सभी ठीक ठाक होंगे।
1: जी जी सर, आकाशवाणी परिवार भी बहुत बढ़िया है। तो सर बताइए, आज आप गपशप अड्डा में कौन सा सॉन्ग शामिल करवाना चाहेंगे?
2: गाने के बोल हैं, ना गजरे की धार ना मोतियों के हार, फिल्म का नाम है मोधा, ये सुनवा दीजिए।
1: जी जी सर, तो हम सुनवाते हैं आपको आपका सॉन्ग।
2: जी नमस्ते।
1: जी सर नमस्ते।

0: दोस्तों प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था एक सवाल, और हमारा सवाल था बॉलीवुड हिट फिल्म क्रिश किस वर्ष रिलीज हुई थी, जिसका सही जवाब है 2006। और सही जवाब देने वालों के नाम है
1: दोस्तों, सही जवाब देने वालों के नाम में शामिल है धर्मेंद्र छिपा, जॉन डिकास्टो, राष्ट्रपाल गजवीय, हीरामानी वर्मा, दिनेश वर्मा, सुदर्शन शाह, ताज अंसारी, एम असलम सैफी, अशोक सिंह, अनिल विनोचा, शकील अहमद इदरीसी, बी आई ढाकर, मोहम्मद सईद अब्बासी, बबलेश पवार, संजय ढींगिया, रामकुमार रेवाड़, जगदीश धाकड़, नंदन कुमार सिंह, मोहम्मद रफीक पवार, फागुराम यादव, हल्के जयपाल यादव, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मोहम्मद आमिर अंसारी, निसार सलमानी, मसरूर हसन, दोमेंदर नेट, डोमू, नदीम बाकी, दिग्दर्शन गौर, सहजादी परवीन चौहान, मुजफ्फर अली खान, मिसबा शमशी, राजकुमार डूडी, नारायण प्रधान, रवि कुमार, राहुल कुमार। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है
0: आपको पसंद आया होगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी, अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
2: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अब अपनी साथी उज्मा और
1: सलोनी को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement

0: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो आपके ठीक होंगे और उम्मीद है कि भैया आपकी खेती किसानी अच्छी चल रही होगी। और भैया देखो, जो आपने अन्य व्यवसाय कर रखे हैं वो भी भैया ठीक ठाक चल रहे होंगे। और अगर अन्य व्यवसायों की बात करें तो हमारे किसान भाई डेयरी व्यवसाय करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, और इसके साथ भैया और भी अन्य व्यवसाय करते हैं। बस भैया इस गर्मी के मौसम में हमें इन व्यवसायों में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैया गर्मी से हम ही नहीं भैया, हमारे जो भी अन्य व्यवसाय हमने कर रखे हैं, चाहे भैया वो मधुमक्खी पालन का हो, मछली पालन का है, या भैया डेयरी व्यवसाय का रखा, भैया उन सब में देखो गर्मी में हमें अच्छे प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है।

और जहाँ तक भैया बात मधुमक्खियों की है, तो मधुमक्खियों के बक्सों को भैया छायादार स्थान में रखना चाहिए, बक्सों को धरती के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। इसके लिए हमारे किसान भाई किसी बर्तन में पानी भर के फिर बक्सों के पैरों को, भैया जो उसके पाए हैं इसको भैया रख सकते हैं। इससे भैया ये फ़ायदा होगा कि जो चींटियाँ हैं भैया वो हमारे बक्सों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ऐसे ही हम अपने पशुओं का भी खास ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ भैया जो पशुशाला प्रबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पशुशाला को साफ और स्वच्छ और हवादार बना सकते हैं। अपने पशु को पीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी दे सकते हैं। तो भैया ये तो बात हुई गर्मी से बचाव की। अब भैया देखो, खेती बाड़ी की बात कर ही रहे थे हम, और भैया आगे को भी करेंगे और किसान भाइयों का मनोरंजन भी करवाएंगे। तो देखो भैया, एक बात यो है कि भैया समय के साथ खेती में भैया कई बड़े बदलाव आए हैं, हमारे किसान भाई जानते ही हैं। पहले भैया हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करते थे, जिसमें स्थानीय बीज, जैविक खाद और पशु शक्ति का अधिक उपयोग होता था। आज आधुनिक खेती में उन्नत बीज, मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और डिजिटल तकनीकों का भैया प्रयोग बढ़ रहा है। इन नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को समय-समय पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को ऐसी ही सहायता प्रदान करती है। इस योजना से प्राप्त राशि का उपयोग किसान गुणवत्तापूर्ण बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, बीज उपचार या अन्य कृषि निवेशों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती में बढ़ती लागत के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभरी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। भाइयों, योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होती है। किसान का भूमि रिकॉर्ड सही होना चाहिए तथा उसका आधार कार्ड, बैंक खाता आवश्यक रूप से जुड़ा होना चाहिए। सरकार ने योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई केवाईसी को भी अनिवार्य किया है। ई केवाईसी के माध्यम से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जाती है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई पात्रता की, और अब बात करते हैं कि किसान भाई कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आधारित पोर्टल पीएम किसान पोर्टल पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आवेदन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, या भैया नज़दीकी सीएससी यानी कि जन सेवा केंद्र से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज जिसमें भैया आपका खसरा खतौनी होती है। तो किसान भाइयों, प्रत्येक पात्र किसान को इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए। और भैया देखो, अब लाभ हम भी ले लें एक चीज़ का, वो है भैया कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ ये जरूरी संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान

0: हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ही जरूरी संदेश और अब भैया कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर से खेती किसानी की ओर। किसान भाइयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने की खेती बहुतायत से हमारे किसान भाई करते हैं। इस समय गन्ने की बात करें तो भैया गन्ने में कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, तो आज हम अपने किसान भाइयों को जो जानकारी लेकर आए हैं उसका विषय है गन्ने में लगने वाले कीट एवं उनके नियंत्रण पर। किसान भाइयों, अगर हम कीटों की बात करें तो लगभग 10 से 12 माह तक खेत में हमारा गन्ना रहता है, इसलिए विभिन्न अवस्थाओं में अनेक प्रकार के कीट इसका नुकसान करते हैं। यदि भैया समय रहते इन कीटों की पहचान और नियंत्रण नहीं किया जाए तो उत्पादन में लगभग 20-50% तक की कमी आ सकती है। इसलिए किसानों को गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीटों, उनके लक्षणों तथा नियंत्रण उपायों की जानकारी होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, गन्ने में जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है वो प्रारंभिक तना छेदक है। यह कीट प्राय मार्च से जून तक सक्रिय रहता है। इसकी सुंडी गन्ने के छोटे पौधों के तनों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है और भैया अंदर ही अंदर ये तने को खाती रहती है। इसके कारण बीज की पत्तियां जो है वो सूख जाती हैं, जिसे भैया डेड हर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सूखी हुई पत्ती को अगर खींचते हैं तो वो भैया आसानी से बाहर आ जाती है और उसके निचले भाग में हल्की सी दुर्गंध आने लगती है।

0: अभी भैया गन्ने का एक महत्वपूर्ण कीट है, यह पौधों के ऊपरी भाग को नुकसान पहुंचाता है। इसकी सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर तने के अंदर प्रवेश करती है। प्रभावित पौधों को जो ऊपर की भैया पत्ती होती हैं उस पर छेद दिखाई देते हैं तथा बाद में जो शीर्ष भाग है भैया वो सूखने लगता है। इसका प्रकोप अधिक होने पर भैया गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई खेत की समय समय पर निगरानी करते रहें, प्रभावित जो पौधे हैं भैया उनको हटाकर नष्ट कर दें। साथ ही भैया ट्राइकोग्रामा जैसे जैविक नियंत्रण साधन का उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तीसरा भैया जो कीट है वो है जड़ छेदक। ये भी भैया मुख्य रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसकी सूंडी जड़ों और तने के निचले भाग को नुकसान पहुंचाती है। प्रभावित पौधे पीले पड़ जाते हैं और भैया उनकी वृद्धि रुक जाती है। कई बार पौधे सूख भी जाते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें तथा प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। इसके बाद भैया बात आती है पायरेला कीट की। ये भी भैया गन्ने का रस चूसने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। इसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों का रस चूसते हैं। प्रभावित पत्तियां अगर आप देखेंगे तो भैया पीली पड़ जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह कीट भैया एक चिपचिपा पदार्थ जैसा आपको दिखाई देगा ये छोड़ता है जिस पर काली फफूंद विकसित हो जाती है। इससे पत्तियों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो भैया समय समय पर हमारे जो किसान भाई हैं वो निगरानी करते रहें। इसके अलावा भैया जैविक तरीके से इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई करें। और भैया अगर खेत में इसका प्रकोप अधिक हो गया है तो भैया वैज्ञानिकों की संस्तुति या सलाह के अनुसार ही भैया उसमें रसायन का इस्तेमाल करें। और भैया आप जानती हैं दीमक भी हमारी जो फसल है गन्ने की फसल उसको नुकसान पहुंचाती है। गन्ने की फसल को प्रारंभिक अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो दीमक है भैया इसका बहुत सारे नुकसान होते हैं। यह है भैया बीज के टुकड़ों जड़ों तथा भूमिगत तनों को खाती है। प्रभावित पौधे हमारे जो गन्ने के हैं भैया वो कमजोर हो जाते हैं और कई बार अंकुरण भी प्रभावित होता है। दीमक का प्रकोप विशेष रूप से सूखे खेतों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई खेत में उचित नमी बनाए रखें, सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें तथा भैया बीज उपचार अवश्य करें। तो किसान भाइयों ये तो बात हुई गन्ने में लगने वाले कीटों की और उसका नियंत्रण के विषय में। अब भैया किसान भाइयों और हम आगे चलते हैं और भैया हमारे किसान भाई किस प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से वो बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो भैया इस विषय पर हमने बात की श्री आरएन वर्मा जी से जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं बिजनौर में। और इनसे बातचीत का हमारा विषय है किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका। तो आइए सुन लेते हैं उनसे की गई ये बातचीत। किसान भाइयों आप सब खेती तो करते ही हैं और खेती के साथ साथ आप अन्य व्यवसाय भी करते हैं और आप जानते ही हैं कि आज के समय में केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना कई बार किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बागवानी किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम बनकर सामने आई है। फल सब्जियां फूल और औषधीय फसलें कम भूमि में भी अधिक लाभ देने की क्षमता रखती हैं। तो इस बारे में हम बात करने के लिए आज आ पहुंचे हैं श्री आरएन वर्मा जी के पास जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं बिजनौर में। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और सर आज आपसे बातचीत का हमारा विषय रहेगा किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि बागवानी किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: आज के परिवेश में उद्यान विभाग में जो उद्यानी विकास कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से जो बागवानी की फसलें हैं
0: जी
1: उसमें किसानों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे बागवानी की फसलें हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, पपीता है, हाई डेंसिटी के जो आम के उद्यान रोपण है, लीची है, अमरूद है, इनका बागवानी करके किसान भाई अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कम लागत में कम भूमि में किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं इन फसलों को अपना करके, तो काफी अच्छा है। और हमारे विभाग से

0: सारे बागवानी की फसलों के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है। तो हमारा प्रयास है कि हमारे जनपद के जो भी किसान भाई हैं वो इन औद्यानिक जो बागवानी है उनकी बाग लगा करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि बागवानी अगर हमारे किसान भाई करते हैं, साथ ही साथ वो एक तो अपनी आय में भी बढ़ोतरी करेंगे और उनको छोटे छोटे अवसर मिलेंगे धन अर्जित करने के, और वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल निश्चित रूप।
1: अच्छा सर, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कौन कौन सी फल और सब्जियां हैं जिनकी फसलें किसान लगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं?
0: वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ औद्यानिक बागवानी की फसलें हैं, स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, पपीता है, अमरूद है, आम है, लीची है, इन सब बागवानी की फसलें को किसान भाई अपना करके लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारा सागबाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम होता है जिसमें वो लता वर्गीय सब्जियों का किसान भाई और आपका टमाटर है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, खीरा है, इन फसलों को भी सागबाजी की फसलों को अपना कर किसान भाई अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं वो सब्जी की खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि ये कम समय में और अधिक उत्पादन देने वाली फसलें होती हैं, तो जो लघु सीमांत किसान है उनके लिए काफी ये लाभप्रद है।
1: बिल्कुल सर, आपने बताया कि इस किसान भाई कौन कौन सी सब्जी की फसलें लगाकर वो लाभ कमा सकते हैं, और छोटे और सीमांत किसान भी इसमें लाभ कमा सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम देखें कि अब जो जमीन है वाटर लेवल भी कम होता चला जा रहा है और जो भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो क्या हमारे किसान भाई बागवानी फसलें अगर करना चाहते हैं तो कम पानी और कम भूमि में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं सर वो?
0: निश्चित रूप में कि किसान भाई जो कम पानी में कम लागत में भी औद्यानिक फसलों को बागवानी की फसलों को करके लाभ कर सकते हैं। और खास करके हमारे यहाँ एक स्कीम है, योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर्ड ऑफ मोर क्रॉप, इस सिंचाई की पद्धति को अपना करके किसान भाई जो है एक तो अपनी लागत कम कर सकते हैं, दूसरी अपने उत्पादन जो है वो उसमें वृद्धि हो सकती है और क्वालिटी युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम जो भी किसान भाई ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उनके लिए लघु सीमांत किसानों को 90% और जो सामान्य किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनके लिए 80% अनुदान की व्यवस्था भी है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इससे जल संरक्षण भी होगा, किसानों की लागत कम हो जाएगी, उनके उत्पादन बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से उद्देश्य हमारा यही होता है किसान भाई अपनी लागत को कम करे, तो इस सिंचाई की पद्धति को अपना करके किसान भाई अपनी लागत और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, और आजकल तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो भी इस ओर है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, हर क्षेत्र में इस ओर प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित करने के लिए उद्यान विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है?
0: वर्तमान समय में उद्यान विभाग में जो एकीकृत बागवानी विकास योजना है उसमें विभिन्न प्रकार की जो बागवानी है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, पपीता है, आम है, अमरूद है, लीची है, ये सारी बागवानी की खेती के लिए हमारे यहाँ जो है अलग अलग फसलों पे अलग अलग बहुत अच्छे अनुदान की व्यवस्था है। जैसे स्ट्रॉबेरी करेंगे तो उसमें 80,000 रुपये पर हेक्टेयर अनुदान की व्यवस्था है, ड्रैगन फ्रूट करेंगे तो 1,62,000 रुपये के अनुदान की व्यवस्था है, इसी तरीके से आपका हाई डेंसिटी पे करते हैं तो 30,000 रुपये की पर हेक्टेयर के अनुदान की व्यवस्था है। तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, उनको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए और इन बागवानी की फसलों में जो अनुदान की व्यवस्था है उससे लाभान्वित हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, यानी कि अब सरकार का और जो हमारे वैज्ञानिक हैं का ये प्रयास है कि किसान कुछ हटके करे। हटके का मतलब है कि वो अब स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकता है, ड्रैगन फ्रूट की खेती भी कर सकता है, यानी कि वो पारंपरिक तौर तरीकों को छोड़कर।
0: वो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं पहले किया करते, जैसे आम अमरूद तो एक मतलब सामान्य रूप से पहले से ही चला रहा, लेकिन अभी अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को भाइयों को जैसे ड्रैगन फ्रूट है इसका फल काफी महंगा बिकता है, स्ट्रॉबेरी है इसका फल भी काफी महंगा बिकता है, तो किसान भाई कुछ अलग हटके थोड़ा सा अगर करते हैं खेती और जनपद बिजनौर में तो काफी मात्रा में अब ड्रैगन फ्रूट के

0: बड़े पैमाने पर लोग खेती कर रहे हैं क्योंकि इससे उनको लाभ अच्छा प्राप्त हो रहा है। तो मेरा सुझाव है और किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा सा जैसे हाई डेंसिटी कम स्पेसिंग पे जो प्लांटेशन करें, चाहे वो आम का है और अमरूद का है, तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा पड़ते हैं तो उनको किसान भाइयों को उत्पादन अच्छा मिलेगा और उसकी ऑपरेशनल जो भी शस्य क्रियाएं होती उसको करने भी उनको आसानी होगा और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए। आज की आवश्यकता है कि हम जो भी उत्पाद पैदा करें उसकी क्वालिटी अच्छी हो
1: जी।
0: जिससे कि बाजार में किसान भाइयों को उनको अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। तो इसी बात पर हम लोगों का विशेष जोर रहता है और किसान भाइयों को हम लोग बताते हैं कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट करें तो जिससे आपको अच्छी आय प्राप्त हो सके।
1: तो सर, अभी आप ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, तो किसान भाई इसे प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? कैसे वो ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं और कितने दिन की ये प्रक्रिया है जो उनको उपलब्ध हो जाएगा? सर,
0: जो भी किसान भाई ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो उनको हमें विभाग का जो हमारा पोर्टल है उस पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के पश्चात हमारे विभाग से इसकी आपूर्ति के लिए संस्थाएं चिन्हित होती हैं।
1: जी
0: तो जो भी किसान भाई आवेदन करता है, विभाग द्वारा जो चयनित या चिन्हित संस्थाएं होती है उनके माध्यम से हम किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
1: जी
0: तो उसमें कुछ नहीं है, उनको करना होगा, बाकी पौधों की आपूर्ति वो हमारे विभाग से ही किसान भाई को आसानी से प्राप्त हो जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं होती।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया, इस प्रकार से हमारे किसान भाई उस पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़े, तो सर सबसे मुख्य कारण है इस समय पानी। और अगर सिंचाई की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी तकनीक है या कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका किसान भाई लाभ उठा सकते हैं अपने जो भी वो फल की खेती बागवानी कर रहे हैं उसमें सिंचाई के लिए?
0: देखिए, आजकल किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक ये है कि किसान भाई ऐसी खेती करे जिससे कि उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके।
1: जी
0: मुख्य रूप से संरक्षित खेती है। संरक्षित खेती में क्या होता है, समय से पहले चीज़ें तैयार हो जाती हैं, बेमौसमी, जैसे सीजन नहीं है ऑफ सीजन में चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो उससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। संरक्षित खेती में आप फूलों की खेती कर सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जैसे कलर्ड शिमला मिर्च है, खीरा है,
1: जी
0: टमाटर है। टमाटर का भी बड़ा कभी कभी होता है कि रेट बहुत
1: जी
0: फ्लक्चुएट करता है।
1: जी
0: तो संरक्षित खेती में जिस पॉली हाउस के अंदर अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो एक तो किसानों को अच्छा रेट प्राप्त हो जाता है क्योंकि ये बेमौसम में चीज़ें हमें उपलब्ध हो पाती हैं।
1: जी
0: और उसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर की सिंचाई की व्यवस्था होती है जिससे किसान भाई पानी की भी बचत कर लेता है और उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आजकल तो सर बहुत सारी ऐसी तकनीक चल रही हैं जैसे ड्रिप सिंचाई की आप बात कर रहे थे, तो इस तकनीक को अपनाकर किसान लाभ कमा सकते हैं। सर, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या बागवानी के साथ मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है या नर्सरी व्यवसाय जोड़कर अतिरिक्त आमदनी हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं क्या?
0: निश्चित रूप से, क्योंकि आज के समय में एक चीज पे अगर हम निर्भर रहते हैं तो हमको लाभ अच्छा नहीं मिलेगा। हमको विविधीकरण करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी आय में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए जैसे किसान अपना सब कुछ कर ही रहा, उसके साथ उसने अगर 10-20 बक्से मधुमक्खी के रख लिए तो एक अतिरिक्त पार्ट टाइम में वो भी काम चलता रहे लेकिन एक अतिरिक्त आय का स्रोत उसका बन जाएगा। मधुमक्खी पालन है, मशरूम का है, आजकल उसकी भी बड़े बड़े शहरों में पहले, लेकिन अभी तो छोटे छोटे जगहों पर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही, शादी ब्याह में और तमाम फंक्शनों में
1: जी
0: इसका उपयोग हो रहा है। तो मशरूम एक अच्छा व्यवसाय है, खास करके तो ये सर्दियों में तो एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है, लेकिन अगर वो कोई परमानेंट व्यवस्था करके करते हैं तो किसान भाई को अच्छा और लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें हमारे यहाँ से 40% तक अनुदान की व्यवस्था है, चाहे वो मशरूम कंपोस्ट बनाना चाहे या
1: जी
0: मशरूम का प्रोडक्शन करना चाहे या मशरूम का बीज बनाना चाहे लैब
1: जी
0: में,
1: जी जी जी
0: इन तीनों पर हमारे यहाँ 40% अनुदान की व्यवस्था है। तो आज की आवश्यकता है कि विविधीकरण अपना करके बागवानी भी करे, सब्जी की खेती करे, मधुमक्खी पालन भी करे, मशरूम का भी काम करे, तब किसानों को मछली पालन भी कर ले, अपना डेयरी का उद्योग भी उसी में कर ले। तो किसान को अगर एक जगह कहीं नुकसान होता है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर,
0: और सह फसली खेती करे किसान, मतलब एक फसल के ना हो के उसमें सह फसली खेती करे, जमीन खाली रहती है तो किसान को मतलब जो आय है उसमें अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि किसान जो है सह फसली खेती कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। सर अगर आगे हम आपसे जानना चाहें, किसान भाई अपने खेत में फलदार पौधों के साथ अंतर्वर्ती खेती कैसे कर सकते हैं सर, या कैसे वो लाभ कमा सकते हैं?
0: जैसे बागवानी की जो फसलें हैं, चाहे वो आम है, अमरूद है, लीची है, ये जो भी हैं, ड्रैगन फ्रूट भी है, इसमें जैसे हल्दी है, अदरक है, इंटरक्रॉपिंग के रूप में लेने से किसान भाइयों को उसको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। छाया भी रहता, छाया में हल्दी बहुत अच्छी होती
1: जी,
0: है,
1: जी, जी,
0: अदरक भी होता है। और उसके बाद मान लीजिए टमाटर है आपका, ये प्याज है, लहसुन है, इंटरक्रॉपिंग में करके सह फसली करके किसान भाई को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। हम लोगों का सुझाव रहता है कि किसान भाई सह फसली में इंटरक्रॉपिंग करे, जिससे कि उसको दूसरी फसल से भी अच्छी इनकम प्राप्त हो सके।
1: बिल्कुल सर। अच्छा सर, आने वाले समय में बागवानी क्षेत्र में किसानों के लिए कौन कौन सी नई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं सर?
0: आने वाले समय में किसान भाई जो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं वो है ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है
1: जी,
0: इस पे उनका जोर ज्यादा है और उससे उनको लाभ भी अच्छा प्राप्त हो रहा है। और खास करके और एक चीज है, हाई डेंसिटी
1: जी
0: की विधि से जो प्लांटेशन हो रहा है उस पे किसान भाई उसका उपयोग कर रहे हैं, उसकी तरफ रुझान उनका ज्यादा है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर अभी इतनी अच्छी जानकारी आप किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका पर दे रहे हैं सर, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: देखिए, मेरा किसान भाइयों से है कि आज के परिवेश में बागवानी या औद्यानिक क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें प्रसंस्करण का भी बहुत बड़ा मतलब स्कोप है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो भी उनका उत्पाद है उसको बचाने के लिए जो प्रसंस्करण की हमारी स्कीमें हैं उसके क्षेत्र में आए, तो उससे क्या है कि एक तो उनका जो उत्पाद है वो लंबे समय तक और उसका उपयोग सही तरीके से हो सकता है और उससे उनकी आय में वृद्धि होती है। और बाकी जो संरक्षित खेती है इस पे हम लोगों का जोर है कि किसान भाई संरक्षित खेती करे जिससे उसको अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
1: जी, जी जी।
0: और जो सिंचाई की पद्धति है, खुले में सिंचाई करना बंद कर दे किसान भाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की पद्धति से अपना सिंचाई करे तो उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। और छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए हमारे यहाँ PMFME स्कीम है, इसमें 10 लाख रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है। तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में जुटे किसान भाई आगे बढ़े, संरक्षित खेती को अपनाएं, सिंचाई के जो नई तकनीक है उसको अपनाएं और अपनी जो नई नई प्रजातियां हैं जो अच्छी उत्पादन करती हैं उसको अपनाएं, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को औद्यानिक क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मसाले की खेती को अपना करके, प्याज है, लहसुन है, ये सारे कार्यक्रमों पर विभाग के द्वारा हमारे यहाँ सभी अनुदान की व्यवस्था है। तो अगर इसको किसान भाई कम अपनाता है तो कम क्षेत्रफल में कम जगह में उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है कम समय में।
1: जी जी, ये बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आज आपने बताई और आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका। किसान भाई अभी श्री RN वर्मा जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं बिजनौर में, उनसे की गई बातचीत सुन रहे थे। और भैया उम्मीद है कि किसान भाई अब अपनी आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका भैया समझ गए होंगे, अब वो बागवानी अच्छे तरीके से करेंगे। तो उम्मीद है भैया आप इस जानकारी से लाभ कमाएंगे। और भैया देखो, आज से यानी कि भारत सरकार के आह्वान पर 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भैया मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, किसानों को संतुलित पोषण प्रबंधन, हरी खाद एवं जैविक उत्पादों के उपयोग का प्रशिक्षण देना है, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना तथा खेत स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करना, साथ ही मृदा स्वास्थ्य सुधारना एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, इसके अलावा जलवायु और मौसम के अनुसार कम पानी में बेहतर फसल लेने और फसल चक्र अपनाने से है। तो खेत बचाओ अभियान भैया ये चल रहा है 1 जून से 30 जून तक ये चलेगा। और भैया देखो किसान भाई नू कह रहे होंगे भैया ये तो बात ही करो जा रहे हैं, कुछ गीत संगीत तो भैया कुछ सुनवाई ना रहे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सुनते हैं मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ ये जरूरी संदेश।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

सुख थोड़े दुख घने जगत में। किसान भाइयों ने अभी मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी सुनी और भैया उनका मनोरंजन हो गया होगा। और भैया अब घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया और बातचीत की इजाज़त घड़ी नहीं दे रही है। तो किसान भाइयों उठाइए कागज़ और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 2467 63। और साथ ही भैया एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या सुधार चाहते हैं। तो नंबर है हमारा 9457072888। तो भैया इस मोबाइल नंबर पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। वार्ताकार हैं वीर सिंह।
1: सृष्टि के आरंभ से ही प्रकृति मनुष्य की रक्षक और पालनहार रही है। शुद्ध जल, साफ हवा, फल फूल देकर प्रकृति ने मनुष्य को एक माँ की तरह अपनी गोद में पाला है। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ उपहार में दिया जिसकी हमें जीवित रहने के लिए जरूरत है। जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं, तब तक प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बना रहा। आधुनिक बनने की होड़ में, विकास की अंधी दौड़ में हमने खुद को प्रकृति का स्वामी समझ लिया। आज हमने अपनी सुविधा के लिए जंगलों को काटकर उनकी जगह कंक्रीट के महल खड़े कर दिए। कल कारखानों के धुएं से आसमान को काला कर दिया और नदियों को कचरे का पात्र बना दिया। मानव सभ्यता ने जैसे जैसे उन्नति की, विज्ञान और उन्नति का विकास हुआ, जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। मानव की जरूरतें लालच में बदलने लगी। इसी लालच ने मानवीय हस्तक्षेप को जन्म दिया जिसने आज प्रकृति के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया है। आज के समय विकास के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है। आज शहरों का विस्तार करने के लिए हजारों एकड़ में फैले जंगलों को काटा जा रहा है। जब जंगल कम होते हैं तो न केवल हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है बल्कि उन अनगिनत पशु पक्षियों के घर भी छिन जाते हैं जो जैव विविधता का आधार हैं। हमारी प्रकृति के ये पशु पक्षी और छोटे जीव कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। खाद्य श्रृंखला में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। मांसाहारी पशु शाकाहारियों को नियंत्रित रखते हैं जिससे वनस्पतियों का अत्यधिक दोहन नहीं होता। वहीं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत अवशेषों को हटाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। जैव विविधता का अनुपात बिगड़ने का सीधा असर प्रकृति पर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के बक्सवाह जंगल जहां हीरा खनन परियोजना के लिए लगभग लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, ये क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है जहां पहले से ही पानी की कमी है। आरे कॉलोनी महाराष्ट्र, जिसे मुंबई का फेफड़ा कहा जाता है, यहां भी मेट्रो कार्ड शेड निर्माण के लिए हजारों पेड़ काटे गए। ये मानवीय हस्तक्षेप का एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही न जाने कितनी जगह आज पेड़ों को काटा जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप का एक नया और चिंताजनक रूप अंधाधुंध पर्यटन के रूप में सामने आया है। आज दुर्गम पहाड़ों, शांत वादियों, पवित्र नदियों को हमने पिकनिक स्पॉट बनाकर वहां गंदगी का ढेर लगा दिया है। अत्यधिक पर्यटन के कारण लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान से लेकर शिमला और मनाली जैसे पहाड़ों पर गाड़ियों का लंबा जाम, प्लास्टिक के कचरे का अंबार दिखाई देता है। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे होटलों और सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों के संसाधनों का दोहन होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों और वन्य जीवों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बढ़ती दखलंदाजी से ही हम अक्सर पहाड़ों के दरकने और अचानक आने वाली आपदाओं के बारे में सुनते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या अब एक वैश्विक संकट बन चुकी है जिसका सबसे सटीक पैमाना AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक है। टीवी चैनलों और अखबारों में अब मौसम से ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि आज शहरों की हवा सांस लेने लायक है या नहीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का स्तर अक्सर 400 या 500 के पार पहुंच रहा है जिससे AQI की गंभीर श्रेणी माना जाता है। ये बढ़ा हुआ AQI सीधे तौर पर मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। जब हम AQI के बढ़ते आंकड़ों को देखते हैं तो असल में हम अपनी ही जीवन शैली के कारण पैदा हुए संकट को देख रहे होते हैं। प्रदूषित हवा अब केवल आंखों में जलन या खांसी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये फेफड़ों और दिल की बीमारियों का प्रमुख कारण बन चुकी है जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जिन पहाड़ों पर सर्दियों में कई फीट बर्फ जमी रहती थी वे अब सूखे और भूरे नजर आते हैं। बर्फबारी के लिए जिस नमी और ठंडक की आवश्यकता होती है वो अब मानवीय हस्तक्षेप के कारण बिगड़ती जा रही है। बर्फबारी न होने से न केवल हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, बल्कि पहाड़ों में ठंडे मौसम की वजह से जो कीमती औषधियां पनपती थीं, उन पर भी मानवीय हस्तक्षेप का गहरा असर पड़ा है। सदियों से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति इन्हीं पहाड़ों से मिलने वाली औषधियों पर निर्भर रही है। इन औषधियों में कई औषधियां ऐसी हैं जो केवल एक विशेष तापमान और वातावरण में ही उगती हैं। जब पहाड़ों का तापमान बढ़ता या पहाड़ों पर आग लग जाती है या बर्फबारी कम होती है तो इन पौधों की जीवन शक्ति समाप्त होने लगती है। इसके साथ ही कुछ लोग मुनाफे के कारण इन औषधियों का अवैध दोहन भी कर रहे हैं। इस मानवीय हस्तक्षेप के कारण भविष्य में कई असाध्य रोगों के लिए मिलने वाली कई प्राकृतिक दवाएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर रिकॉर्ड गति से पिघल रहे हैं, केदारनाथ की त्रासदी या चमोली की अचानक आई बाढ़ जैसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि जब हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बांध और अनियंत्रित निर्माण करते हैं तो प्रकृति कैसे जवाब देती है। उत्तराखंड के जोशीमठ का उदाहरण सबसे ताजा है, जहां जमीन धंसने के कारण लोगों के घर उजड़ गए। विशेषज्ञों का मानना है कि वहां की संवेदनशील जमीन पर अत्यधिक बोझ और सुरंगों के निर्माण ने पहाड़ों की नींव हिला दी। प्रकृति के साथ की गई इस छेड़छाड़ का असर हमारी नदियों और जल स्रोतों पर भी पड़ा है। यमुना नदी का उदाहरण हमारे सामने है, जहां रासायनिक कचरे और बढ़ते प्रदूषण के कारण सफेद जहरीले झाग का पहाड़ बन जाता है। ये विडंबना ही है कि जिस जल को हम जीवन कहते हैं उसी जल को हमने जहरीला बना दिया है। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और रसायनों का कृषि में उपयोग मानवीय हस्तक्षेप का एक और काला अध्याय है। हमने अपनी सुविधा के लिए प्लास्टिक का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो न तो मिट्टी में गलता है और न ही नष्ट होता है। ये प्लास्टिक समुद्रों तक पहुंचकर समुद्री जीवों का भी अंत कर देता है और अंततः सूक्ष्म कणों के रूप में हमारे ही शरीर में प्रवेश कर रहा है। मिट्टी की उर्वरता भी कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से खत्म हो रही है, जिसकी वजह से भोजन की गुणवत्ता गिर गई है। बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा अब नई सामान्य स्थिति बन गई है। ये सब प्रकृति का वो असंतुलन है जिसे हमने खुद अपनी सुख सुविधा की वेदी पर पैदा किया है। मानवीय हस्तक्षेप का ही ये बड़ा ही भयानक उदाहरण है कि अमेजन जंगल, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता

0: जाता है। वहाँ खेती और मवेशियों के पालनों के लिए हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगलों को जला दिया गया, जिससे लाखों जीव जंतु भी खत्म हो गए। एक और डरावनी घटना मध्य एशिया के अरल सागर की है। इंसानी लालच के कारण सिंचाई के लिए इसकी सहायक नदियों का रास्ता मोड़ा गया, जिससे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील सूखे रेगिस्तान में बदल गई है। रात में जलने वाली अत्यधिक और अनावश्यक लाइटों ने प्राकृतिक अंधेरा को लगभग खत्म कर दिया है, जिसके परिणाम बहुत खतरनाक हैं। कई पक्षी रात में तारों और चंद्रमा की रोशनी की मदद से रास्ता तय करते हैं। समुद्री कछुए अंडे से निकलने के बाद समुद्र की ओर जाने के लिए प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कृत्रिम रोशनी की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और मारे जाते हैं। रात में सक्रिय रहने वाले कीट पतंगे कृत्रिम रोशनी की वजह से परागण क्रिया नहीं कर पाते, जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। अधिक रोशनी से हमारे शरीर में बनने वाला मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमें सोने में मदद करता है, ये भी प्रभावित होता है, जिससे हमें थकान और तनाव होता है। मानवीय हस्तक्षेप में हमने रात की शांति और अंधेरे को भी प्रदूषित कर दिया है। इन तमाम तथ्यों और घटनाओं से ये तो स्पष्ट है कि मानवीय हस्तक्षेप ने प्रकृति को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वापसी का रास्ता हर दिन कठिन होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के वैज्ञानिक हमें सावधान कर रहे हैं कि हमारे पास संभलने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक रहने योग्य सुरक्षित धरती देना चाहते हैं, तो हमें उपभोग की संस्कृति को छोड़कर संरक्षण की संस्कृति को अपनाना होगा।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता, जिसका विषय था मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। वार्ताकार थे वीर सिंह। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का गीत। इंदिवर की शब्द रचना को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म है अनमोल मोती। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: छाया गीत कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आरजू फिल्म का गीत। गीत लिखा है असरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें कार्यक्रम विवरण की।

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे आप आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। सुगम संगीत में हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:32 पर सिमरन सैनी की आवाज में भजन। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8 बजे गीत संध्या कार्यक्रम में, रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, और रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस का संगीत में प्रसारण होगा कल सुबह 6:30 पर। कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में होगा आदर्शिनी श्रीवास्तव का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 7:05 पर जानकारी का विषय होगा प्राकृतिक भोजन का त्वचा पर प्रभाव।

कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी जिसका विषय होगा बीज उपचार करने का सही तरीका। सूरज के साथ साथ जानकारी और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम होगा हर रोज की तरह पूर्वाह्न 7:31 पर।

कल सुबह 9:25 पर मृदुला निगम के स्वर में प्रसारित होंगे रुहेलखंडी लोकगीत। कार्यक्रम होगा धरती गाती है बात आसपास की। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे कल पूर्वाह्न 9:50 पर।

0: कल शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में कल क्रम रहेगा दिल से दिल तक और कहानी के उस पार। इस क्रम में आप सुनेंगे कल कहानी घर जवाई के का दूसरा एपिसोड। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रितेश शर्मा से प्रमोद सिंह की बातचीत, जिसका विषय होगा बासमती धान की रोपाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक रहेंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसके अलावा कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा फसलों में सिंचाई प्रबंधन और फसल बीमा योजना विषय पर। कल शाम 6:45 पर 90 साल बेमिसाल क्रम में आप सुनेंगे रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मशहूर शायर सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी से विशेष भेंट वार्ता। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये टैबलेट प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
3: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा।
2: आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं।

0: विकसित हो रही है और अभी गंगा एक्सप्रेस वे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास यही परिवर्तन लाएगा, हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
1: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त किया जाए, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोसंवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: Hey girls!
6: Hi! Congratulations!
5: आज तो पार्टी चाहिए।
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी।
6: ये
5: चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नचिपाबाद केंद्र है। शाम के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन। कलाकार हैं सिमरन सैनी।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुने भजन। कलाकार थी सिमरन कौर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वो हंसी, वो रातें, वो पुराना दौर चला गया, वक्त के साथ साथ जाने कौन किधर चला गया। हम तो आज भी वहीं खड़े हैं उन यादों के सहारे, न जाने वो साथ निभाने वाला कहाँ चला गया।

गीत संध्या कार्यक्रम में अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है शहनाई फिल्म से आशा भोंसले की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

एक नारी दो रूप, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल थे असद भोपाली के और संगीत गणेश का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में रजिया सुल्तान फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार खयाम।

गीत संध्या कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत संध्या कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म हमराज का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रवि का।

महेंद्र कपूर के गाए हमराज फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए, फिल्म के कुछ गीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
1: सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

0: एक दूजे के लिए। इस फिल्म के गीत अभी आपने सुने, कार्यक्रम था एक ही फिल्म से। जो गीत आज आपने सुने उनको आवाज दी थी लता मंगेशकर, अनूप जलोटा, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी
1: इन द रीजन। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से

खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी एफडीए, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के एमएचआरए से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12

0: वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: पहली 1 जून से 31 अक्टूबर तक

0: heatwaves, precautions, preparedness and protection with Mr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, IMD, and Dr. Rupali Malik, Department of Medicine, Safdarjung Hospital. Listeners can ask questions on the subject on telephone numbers 2371-7117 and 2331-4444, prefixing the Delhi STD code. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lai hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दायरी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोख देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के

0: जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आजाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिर खा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। एलपीजी सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल-ए-ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदामात पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदामात किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरखास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी चीज सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत सावधान से बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे।
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागडे हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: डॉक्टर बोल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वाले ने।
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन उसको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, सीओपीडी, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिये, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत बड़ा भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज्यादातर के अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर वो 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
0: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
4: कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 37 डिग्री से ज्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
0: और प्लेन्स के लिए?
4: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
0: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
5: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
0: नमस्कार।
4: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
2: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उठती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज्यादा देर की अगर आप खाली उसमें ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
0: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
2: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए।

0: हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का, उसमें गिना
1: तो
0: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है,
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है, जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है, ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है। लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहां कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें, नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4 4.5 टू 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे. तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट करे.
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है.
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से. जी धर्मवीर जी.
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ. हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार. मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है. मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं. तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है. और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं. और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है. अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है. कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके.
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है. इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा. तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है. और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है. नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं. जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक. आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं. आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक. ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है. और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से. अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
5: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ. मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ. अमित उपाध्याय, मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है. तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है. तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक, उनका भी बेहोशी या कुछ वैसे हो जाता है. तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना, जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
0: कि जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है. तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना. देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिजम्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है. तो वो लोग खास ध्यान रखें. और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें. तो इतना ही है आप कर सकते हैं. और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं.
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है. और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है. बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं.
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेजोडायलेटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके. उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है. तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें.
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता.
6: हाँ जी
1: जी.
6: हाँ कनक दीदी नमस्ते.
1: नमस्ते.
6: हाँ दीदी को भी नमस्ते. सर नमस्ते.
0: नमस्ते.
6: हाँ विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं.
1: जी जी.
6: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
6: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो नहीं होगा.
0: नहीं पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है. तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15 20 22 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल. और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा. और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान, थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा.
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: नहीं आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है.
3: हाँ वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है. तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते. दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं. ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं. आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा. तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है. और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ के मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है. तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं.
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर. लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है. और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है. तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे बचपन टाइम नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है. तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए. जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक, तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके. अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से.
7: नमस्कार मैम जी.
1: नमस्कार
7: जी, मैं रवि जवालिया जड़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी
8: सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी। और आप

0: और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
0: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन पे दत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वास्तव में मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
2: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: रहे। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
2: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
2: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय, जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
2: बिल्कुल बहुत
1: का
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसके लिए
2: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना, अगर बच्चे इतना छोटा बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन से गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि ये क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
4: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा फर्क है, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा है तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान क्या है?
4: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्युनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा, वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं। अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग ये हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और ये जो गीत अभी आपने सुना वो हमने लिया था आशा भोंसले की आवाज़ में बंदनी फिल्म से। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार एस डी बर्मन। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं इजाजत फिल्म का गीत आशा भोंसले की आवाज़ में। गुलजार की शब्द रचना को संगीत दिया है आरटी बर्मन ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में बैंक मैनेजर फिल्म का गीत। इस गीत को कलमबद्ध किया है अनवर फरुखाबादी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

लेकिन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में श्रीमान सत्यवादी फिल्म से एक गीत।

काबुलीवाला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज़ में। बोल थे प्रेम धवन के और संगीत सलील चौधरी का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बीवी और मकान की बीवी और मकान फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम आधारित है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर, जिसमें आप करते हैं किसी भी गीत की फरमाइश जो हम कोशिश करते हैं पूरी करने की। तो अगर आप भी इस वक्त हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उठाइए अपना फ़ोन और अपने व्हाट्सएप पर हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजिए। फरमाइश लिखने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457078288। तो करते हैं सिलसिला आपके मैसेज और पत्र पढ़ने का। ये पहली फरमाइश हमारे पास आई है दूरियां फिल्म से। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल। गीतकार हैं सुदर्शन फाकिर और संगीतकार जयदेव। फरमाइश किया है आप सभी ने बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गांव नथाना पंजाब से हैं हरिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अरफात आदिब और कादिर चौधरी। कोटली कला से हैं यादविंदर सिंह, सुफेंदर सिंह, रविंदर सिंह, मंजीत सिंह और गुरजोत सिंह। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सासदारानी और हेना कौसर।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिकेता केंद्र से। श्रोताओं, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं कार्यक्रम में तो उठाइए अपना फ़ोन और भेजिए हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 9457078288। आइए देखते हैं अगली फरमाइश हमारे पास किस गीत के लिए आई है। अगली फरमाइश है हमारे पास लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म है बिंदिया। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार इकबाल कुरैशी। फरमाइश करता हैं आप सभी। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ग्राम नगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जवर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर, देवा, ओम प्रकाश, छोटी, घनश्याम और शीतल। इसके अलावा ये फरमाइश हमारे पास आई है मॉडल टाउन

करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा। और आप हैं ग्राम जुझेला, थाना शिवाला कला, बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, साइना महबेश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। परिमहल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरसराय बदायूं से हैं आफरीन खान और जमीर खान। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और इनके परिवार के सभी सदस्य। आपकी पसंद कर रहे हैं आपकी नस्ल।

0: जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। कस्बा उगहती बधाइयों से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। मोताला बाजार से हैं बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख बजीर, सोहेल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्या खर्चे, वैष्णवी खर्चे। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कंडवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजपैलेस मंगुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आपने सुनना चाहा है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बात एक रात की का गीत। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत है एसडी बर्मन का।
1: जो इजाजत हो तो एक बात कहूं, जो इजाजत

घटना फिल्म का एक गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। नाज बेलेश अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि, झरना और भरत कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। मारहरा दरवाज़ा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। गांव कल्याण मलका ज़िला बठिंडा से हैं अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटी और एस के पप्पी खुराना। वसई ईस्ट मुंबई से हैं सादिक रंगरेज, आसिफ रंगरेज और मोहम्मद सराफत रंगरेज। फाजिलका पंजाब से हैं विशु खेड़ा, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टेपांची खेड़ा। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। पटेल नगर मलोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। गणेशपुर गंज टुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद गैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। विवेक प्रताप सिंह को अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ शेयर्ड बाय अपराजिता नायर।